हेलो हेलो डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के। यस, दिस इज इपी द हिपी बैक इन द हाउस ओनली ऑन फनीचर रेडियो 104.9 FM एंड यू आर लिसनिंग टू माय शो एन इवनिंग इन डालस। गाइस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड। पहला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इट्स एक्चुअली बाय ए न्यूयॉर्क बेस्ड आर्टिस्ट। हिज नेम इज तुषार, लेकिन उनके बैंड का नाम है समतारा, विच इज़ प्रेटी कूल। इट्स ड्वेल्स ऑन मॉडर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। आई होप यू एन्जॉय दिस। थोड़ा हटके है, कोई बात नहीं, हर हमेशा सेम चीज़ सुनेंगे तो मज़ा कैसे आएगा। लाइफ में थोड़ा चेंज भी ज़रूरत होता है ना।

तो गाइस दैट ट्रैक दैट यू हर्ड दैट वाज सम तारा का ट्रैक. इट वाज कॉल्ड द पाथ ऑफ धर्मा. द वे दे डिस्क्राइब द म्यूजिक दे कॉल इट द साउंड ट्रैक टू कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं. मतलब हमने बचपन से नहीं वो कहावत नहीं सुनी थी, अरे कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है. भाई कलयुग आ चुका है, कुछ भी हो रहा है आजकल की जिंदगी में. लेकिन हम तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं क्योंकि हम अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं एंड हम अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना भी खाते हैं, राइट? तो फॉरगेट अबाउट कलयुग, जस्ट लिव योर लाइफ. कलयुग, परसों युग, इट डजंट मैटर, राइट? व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू आर डूइंग विथ योर युग. तो गाइज कल पता क्या हुआ, आई होप यू डिडंट मिस मी. कल मैं नहीं आई क्योंकि कल ना मेरा एक एक्सीडेंट हो गया. सो आई वॉज स्टक ऑन द रोड एंड देन मेरे सामने वाले, आई वॉज टर्निंग एंड सामने से एक बंदे ने आके मेरे को ऐसे ही ठोकर मार दी और पूरा मेरा सामने का बम्पर डिस्ट्रॉय हो गया. एंड देन आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई नेवर हैव एन एक्सीडेंट, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट. फिर पता है मैंने क्या किया, मैंने कॉल किया उमर ख्वाजा जी को, क्योंकि एक्सीडेंट पता भी नहीं चलता है कैसे होता है, फट से हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इज घड़ाक एक क्रैश हो जाएगा. लेकिन उससे रिकवर करना ज़्यादा टाइम लगता है. एक्सीडेंट चुटकियों में होता है लेकिन रिकवरी में बहुत टाइम लगता है. तो अगर आपकी कार एक्सीडेंट हुई है या ट्रक एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल एंड यू हैव बीन हर्ट, देन लेट अटर्नी उमर ख्वाजा हैंडल द लीगल बैटल वाइल यू

हुई है या ट्रक एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल एंड यू हैव बिन हर्ट, देन लेट अटर्नी ओमर ख्वाजा हैंडल द लीगल बैटल वाइल यू कैन फोकस ऑन हीलिंग. ठीक है, ही इज गोइंग टू हैंडल द स्टफ विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड मेक श्योर आपको सबसे ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिले. एंड आपको अगर आप नहीं जीतते हो तो आपको कोई पैसे उनको देने की जरूरत ही नहीं है, एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया ना. कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomar.com. दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी ओमर ख्वाजा. एज फार एज ट्रैफिक अपडेट्स आर कंसर्न, इफ यू आर टेकिंग 75, ट्रैफिक इज वेरी वेरी स्लो ऑन 75 बिकॉज there is an accident right there and it's probably going to take you 20 minutes extra, so maybe take the side roads, don't be like me. Okay, let's go into the next song.

भाई दुनिया का कोई भरोसा है नहीं, कभी कुछ भी होता है, कभी कुछ भी होता है। आप यहाँ से प्लान करके चलोगे कि ये करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे एक गूगली कहीं ना कहीं से कोई आई जाती है। दैट इज लाइफ, बट यू नो व्हाट, यू गॉट कीप मूविंग ऑन। एग्जैक्टली गाइस। तो फ्रेंड्स, इट इज 7:26 ऑन द क्लॉक। अगर आपको पता है, अगर आप मेरा शो पहली बार सुन रहे हैं, या दूसरी बार सुन रहे हैं, या तीसरी बार सुन रहे हैं, या फिर पिछले कुछ महीनों से कंसिस्टेंटली सुन रहे हैं, देन यू नो आई लाइक टू ब्रिंग न्यू म्यूजिक टू यू गाइज एंड अलॉन्ग विथ सम ओल्ड म्यूजिक ऑल्सो। तो कुछ का आप गाएंगे, कुछ आप सुनेंगे, कुछ आप ऐसे ही डांस करेंगे, इंजॉय करेंगे। ओवरऑल थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग फीडबैक दैट यू गिव मी रिगार्डिंग ऑल ऑफ द स्टफ दैट आई गेट। इट्स ऑलवेज टेकन इन अ पॉजिटिव लाइट। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ कॉल एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट आवर शो। बिल्कुल, वी लव इट, वी लव टू हियर सजेशंस। एंड या तो गाइज, आगे बढ़ते हुए, जैसे आपको पता है, 9 बजे के बाद हमारा क्या बोलते हैं, 9 बजे के बाद हमारा दूसरा सेगमेंट शुरू होता है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड मॉडर्न रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग एप्स एंड डेटिंग कल्चर एंड थिंग्स लाइक दैट। हम आज, जैसे मैंने आपको बोला था, इस हफ्ते का हमारा थीम है रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंसेस। दीज आर सम थिंग्स दैट पीपल डोंट रियली लाइक टू टॉक अबाउट, बट यू नो वॉट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो इसीलिए स्टे ट्यून, वी गोना स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन लिटिल बिट अर्ली। एंड जैसे आपको पता है, 8 बजे हमारा गिव अवे होने वाला होता है। तो स्टिक अराउंड एंड आई विल सी यू इन जस्ट अ लिटल वाइल।

0: खिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी
1: ना खिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी
0: हो इतनी सर्द

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
2: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front पेज पे रहूं।
3: Front पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
2: कैसे?
3: पेज 3 eatery?
2: No, not another restaurant again.
3: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
2: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
4: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन, जस्ट 3 doors down, विद लिमिटेड

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है
3: हाँ
2: घर रिलोकेट करनी है
3: हाँ
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है
3: हाँ भाई हाँ
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है SFL Worldwide को कॉल कर
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग बॉक्सेस शिपिंग कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन ऑटो ट्रांसपोर्ट सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज SFL Worldwide हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335
5: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
6: Guys, we are back. It is 7:34 on the clock. And this is Ippi the Hippie and you are still listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Hamare paas abhi ek choti si request aayi hai from, of course, the one and only Safi, who calls up every time asking for songs, which we love, by the way, guys. Toh agar aapko bhi gaane kuch aise sunne hain that you really want to listen to on your drive back or your drive to wherever you're going, then feel free to give me a call at 972-235-5555 and I can cue that up for you. तो सभी को गाना सुनना था मेरा पिया घर आया अब मेरा पिया घर आया जब बोला है तो मैंने कहा यार इसके तो इतने सारे वर्जन्स हैं विच वन डू वी प्ले नया वाला बजाएं फ्रॉम आवारा वन टू या पुराना वाला बजाएं या फिर नुसरत का वर्जन बजाएं या कौन सा बजाएं मतलब इतने सारे वर्जन्स हैं बट यू नो व्हाट मेरा फेवरेट वर्जन जो है ना मैं आपको वो बजाती हूँ दिस इज़ ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली लेजेंडरी फरीद अयाज और अबू मोहम्मद दो लेजेंडरी कवाली म्यूजिशंस हैं पाकिस्तान से उनका लाइव परफॉर्मेंस फॉर कोक स्टूडियो और वो जब गाना गाते हैं ना मतलब आई फॉर्चुनेटली कुछ 10-12 साल पहले आई हैड द प्लेजर ऑफ वॉचिंग देम लाइव जो उनकी आवाज़ में जो मतलब You know, I can't even explain. It was so beautiful. So I will play you that version because ye mere dil ko chhu jata hai. I hope aapke dil ko bhi chhu jaye.

भाई वो गाना तो मैं नहीं बजा रही थी, मैं बजा तो रही थी कुछ और, लेकिन कुछ और बज गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, गाने जब हम बजाते हैं ना, उसमें इंट्रो भी आ जाता है, कोई रैंडम सी एक ऐड, तो दिस इज द सॉन्ग।

0: party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
0: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com। फ्लोर्स क्लीन
6: चेक,
0: विंडोज क्लीन
6: चेक,
0: किचन क्लीन
6: चेक,
0: एयर डक्ट्स क्लीन।
6: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
7: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
8: Ocho.
9: Hoko.
8: Ocho.
9: Hoko.
8: Ocho.
9: It's Hoko.
10: अरे बस भी करो यार।
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है?
0: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
11: अजी सुनते हो?
12: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
13: द ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो।
14: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एंश्योर होम लोन्स एंड ओमर ख्वाजा प्रेजेंट Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
15: And we are back, friends. It is 8:05 on the clock. और आपको पता है 8:05 क्या होता है? हमारा give away होता है. लेकिन I think give away के पहले एक छोटा सा गाना सुनना बनता है ना, तो एक गाना सुनते हैं, इसके बाद आके हम give away खेलेंगे. Okay?

भाई नादान परिंदे आए कि नहीं आए, लेकिन मैं तो आ गई हूँ. दिस इज इपी द हिपी एंड यू आर लिसनिंग टू फनीशा रेडियो 104.9 FM ऑन माय शो एन इवनिंग इन डैलस. दैट्स राइट यू गाइस, इट इज टाइम टू प्ले द वन एंड ओनली गिव अवे गेम कॉल्ड साउंड्स लाइक. एग्जैक्टली गाइस, तो आज का गिव अवे कहाँ से है? आज का गिव अवे है फ्रॉम मिराज लाउंज. अगर आपको अपना फेवरेट हैंगआउट स्पॉट ढूंढना है, नेक्स्ट फेवरेट हैंगआउट स्पॉट, देन यू नीड टू गो टू मिराज लाउंज, क्योंकि उनके पास है प्रीमियम हुक्कास, अमेजिंग फूड, अमेजिंग कॉकटेल्स, एंड दे हैव लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट्स ऑल्सो. तो अगर आपको पार्टी शार्टी करनी है, देन दिस इज द प्लेस टू गो टू. एंड हियर इज द बेस्ट पार्ट, इनका जो हैप्पी आर है वो मंडे से थर्सडे तक है. वाओ, दिस इज अ रियली गुड हैप्पी आवर बाय द वे गाइस. सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक. भाई किसी को अगर डे पार्टी करनी है, सो दिस इज द प्लेस टू गो. ओके, एंड उनके हुक्कास स्टार्ट होते हैं ओनली फॉर $25 एंड शॉट्स फॉर ओनली 4.99. एंड डोंट मिस आउट ऑन द फन फॉर लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट. सो येस, दिस इज द प्लेस टू गो इफ यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट गर्ल्स नाइट हैंग. ओके, विजिट मिराज लाउंज ऑन मिकिनी रैंच पार्कवे बिकॉज मिरेकल्स कैन हैपन एट मिराज. आज का क्वेश्चन अगर आप आंसर करते हैं, देन यू गेट $20 ऑफ ऑन अ मिनिमम बिल ऑफ $50. तो दैट मीन्स यू हैव टू ऑर्डर वर्थ $50 एंड देन यू गेट $20 ऑफ फ्रॉम देयर. तो खेले, आई एम गोइंग टू चूज टू विनर्स. तो मेरे जो फर्स्ट दो कॉलर्स है, ये गाना बहुत ईजी है. जो फर्स्ट दो कॉलर्स है जिन्होंने गाना गेस कर लिया, उनको ये प्राइज मिल जाएगा. ठीक है, तो मतलब मुश्किल है ही नहीं. आप अगर सुन रहे हो तो जो भी जिसकी भी कॉल लगती है, इट्स नॉट इन माय हैंड बाय द वे. आई डोंट चूज कौन सिलेक्ट होता है, किसकी कॉल मैं आंसर करती हूँ, नहीं. ये ना रैंडमली जो भी कॉल लगती है उसका ही होता है. तो चलें खेलें. तो दिस इज़ द सॉन्ग एंड यू हैव टू टेल मी, इट्स वेरी वेरी पॉपुलर. आई एम नॉट इवन गोना गिव यू एनी हिंट्स एंड लेट्स प्ले. ओ, ये तो दूसरा गाना लग गया. तो आपको करना ये है, सॉरी मैं दोबारा लगाती हूँ. तो आपको करना ये है, मैं गाना लगा रही हूँ, आपको उसका कॉपी भी बोल सकते हैं, उससे सुनता हुआ जो बॉलीवुड गाना है वो बताना है आपको. ठीक है, तो हियर वी गो, दिस इज व्हाट द सॉन्ग इज.

0: caller. Hi, can you hear me? Nope. कॉल कट गया, दूसरे वाले पे जाते हैं. हाय, कैन यू हियर मी?
1: हाय
0: हाय, कैन यू हियर मी?
1: या
0: यस, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर नेम एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर.
1: नेम इज नीरज जैन.
0: नीरज, ओके, गो फॉर इट.
1: आंसर इज जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगा मैं
0: क्या बात
1: नाचूंगा.
0: है, मैं नाचूंगी. वो तो हेमा वाली ने गाली थी
1: या
0: ना. कोई बात नहीं, दैट वॉज अ करेक्ट आंसर. नीरज, आई एम गोइंग टू टेक अ सेकेंड कॉलर. तो आप लाइन पे बने रहिए. अगर कॉल कट जाती है, कॉल मी बैक इन लाइक 5 मिनट्स. ओके, वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट कॉलर हु हैज गिवन, हु वॉन्ट्स टू गिव द प्राइज. ओके, ऑल राइट,
1: हेलो
0: कैन यू हियर मी?
1: हाय.
0: हाय, कैन यू हियर मी?
1: या आई कैन हियर यू.
0: ओके, पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन करेक्ट आंसर.
1: मेरा नाम शुभम है एंड द करेक्ट आंसर इज जब तक है जहाँ शोले पिक्चर से जाने जहाँ.
0: वाह, क्या सही है. एग्जैक्टली. तो भाई, आप लाइन पे बने रहिए, मैं एक गाना लगाती हूँ, देन आई विल टेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके बाद. ठीक है, कंग्रेचुलेशंस, हमारे दो
1: ओके
0: विनर्स हमें मिल
1: थैंक
0: चुके हैं. नीरज एंड शुभम, दोनों ने करेक्ट आंसर दिया. उनकी कॉल सबसे पहले कनेक्ट हुई, तो वी हैव गिवन द प्राइज टू देम. आप ये गाना एंजॉय करिए तब तक.

कभी आपने सोचा है एक कपल के बीच में इतनी सारी बातें होती है, यू नो, व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप और अ मैरिज और एनीथिंग लाइक दैट, वी ऑलवेज थिंक नहीं, हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होंगी. लेकिन छोटी छोटी सीक्रेट्स सबके बीच में होती है. लाइक यू नो, यू गो टू द स्टोर एंड बाय समथिंग फ्रॉम सिफोरा और सम अदर स्टोर एंड डोंट टेल योर हस्बैंड अबाउट इट. या फिर आपके हस्बैंड चुप चुपचाप जाके पीछे से एक्सबॉक्स खरीद के ले आए एंड आपको नहीं बताया. यू नो, दीज थिंग्स हैपन ऑल द टाइम. दीज आर द मनी सीक्रेट्स दैट समटाइम्स पीपल थिंक कि नहीं यार, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट दे टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड दीज आर द थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स. नाउ लेट्स गेट समवेयर सीरियस. फाइनेंशियल सीक्रेट्स जिसकी बात करें, कुछ लोगों के सीक्रेट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, कुछ लोगों के सीक्रेट बैंक अकाउंट्स होते हैं. जैसे मैं कब आई थी, मैं ट्यूसडे को आई थी, राइट? कल तो मेरा सिचुएशन हो गया. एनीवेज, बट ट्यूसडे को जब मैं आई थी, तब आई वॉज टॉकिंग टू यू गाइज अबाउट दिस पॉडकास्ट दैट आई फॉलो बाय दिस अमेजिंग अमेजिंग पर्सन कॉल्ड रमीत सेठी. ही इज़ लाइक ए मॉडर्न डे फाइनेंशियल गुरु, लाइक मॉडर्न डे डेव रैमजी बट देसी फेलो. ठीक है, और वो कपल्स को इंटरव्यू करता है एंड देन ही काइंड ऑफ एनालाइजेस देयर फाइनेंसेस, लुक्स एट व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, चाहे उनके मनी सीक्रेट्स हैं या फिर मे बी दे मेक अ लॉट ऑफ मनी बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग लाइक पे चेक टू पे चेक, मे बी दे मेक हार्डली एनी मनी बट दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर फाइनेंशियल सिचुएशन. तो ही एनालाइजेस अ लॉट एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. आई मीन, आई डोंट हैव अ पार्टनर, आई एम अ सिंगल पर्सन, बट इवन देन आई लर्न अ लॉट अबाउट इन्वेस्टिंग एंड मंथली यू नो बजटिंग एंड मनी डायल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो आई वुड डेफिनेटली एडवाइज ऑल ऑफ यू गाइज टू ऑल्सो चेक इट आउट. ओके, इट्स नॉट, मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा इससे, बट आई एम जस्ट शेयरिंग. तो उसमें जैसे हम अभी बात कर रहे थे सीक्रेट बैंक अकाउंट्स, देयर वॉज दिस वन कपल दैट ही हैड इंटरव्यूड, और उसमें द टू पीपल, द हस्बैंड एंड द वाइफ, दे आर मैरिड टू ईच अदर, बट बिकॉज द वाइफ हैज़ अ स्पेंडिंग हैबिट, द हस्बैंड हैड अ सीक्रेट बैंक अकाउंट ताकि उसकी वाइफ उसका सारा पैसा जो चेकिंग अकाउंट में था उनके ज्वाइंट अकाउंट में वो उड़ाना दे. तो ये तरह की जो हमारी सीक्रेट्स होती है ना, समटाइम्स यू थिंक दे आर जस्ट स्मॉल लिटल थिंग्स, बट दे टेक अ बिग टोल ऑन द रिलेशनशिप जब वो बाहर आती है. सम पीपल हैव हिडन डेट from their partners, some people have secret purchases, some people lie about income altogether, and I have seen it all, especially after watching that podcast. Some, for example, lend money to the family या फिर घर पे पैसे भेजते हैं, which is a pretty normal thing in South Asian households, but some people don't even tell their partners. या फिर sending money to an ex, हाय मेरी ex को बहुत problem आ गई है तो मैं उसे यू नो पैसे दे रहा हूँ या जो भी है इस तरह से, और प्रिटेंडिंग दैट यू आर फाइनेंशियली कंफर्टेबल वेयर यू आर एक्चुअली ड्राउनिंग एंड डेट. दीज स्मॉल लिटल थिंग्स कैन बिकम इनॉर्मस रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. द आर्ग्यूमेंट इज इन जस्ट कि आपने $5,000 स्पेंड करे, तो आर्ग्यूमेंट ये बन जाता है कि वाई डिड यू हाइड इट फ्रॉम मी. इस बारे में और बात करेंगे आफ्टर द सॉन्ग.

0: Krish Ravan celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
3: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
4: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
3: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
4: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
2: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
5: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
6: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
5: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
6: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: जिंदगी एक रंगमंच है,
9: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
10: वी नीड टू टॉक।
11: अब क्या हुआ?
10: Nothing, it's not you.
11: Oh no.
10: It's the distance.
11: Distance? We live 10 minutes apart.
10: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
12: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. Sadia!
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
12: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
12: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

गाइज, अगर आपको वो गाना पसंद आया, दैट सॉन्ग इज कॉल्ड रुक जा, एंड इट इज एक्चुअली ए कॉम्पोजिशन, एन ओरिजिनल कॉम्पोजिशन बाय ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली सलीम सुलेमान, जिन्होंने बहुत अमेजिंग अमेजिंग बॉलीवुड गाने कंपोज किए हैं. और आपने सुना था वो सोनू निगम की आवाज़ में. येस, फॉर दोज हु डोंट नो, सलीम सुलेमान ऑल्सो हैव एन इंडी लेबल वेर दे राइट देयर ओन म्यूजिक विच इज सेपरेट फ्रॉम बॉलीवुड बट ऑल्सो इनक्रेडिबली इनक्रेडिबली गुड. और आई रियली लाइक ऑल ऑफ द स्टफ दैट कम्स आउट ऑफ दैट. तो गाइज, अगर आपको सोनू निगम, ऑफ कोर्स किसको नहीं पसंद, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है, पड़ोस वाली आंटी को भी पसंद है. तो अगर आपको और ज़्यादा सोनू निगम के गाने सुनने हैं और ऑफ कोर्स द अमेजिंग क्लासिक हिट्स, देन यू नो व्हाट यू नीड टू डू. यू नीड टू वॉच आउट फॉर सेप्टेम्बर 26th एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सस इवेंट सेंटर इन एलन. दैट्स राइट गाइज, सोनू निगम इज कमिंग लाइव. ही इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग his concert, which is titled Revolution, and is going to be on September 26th at the Credit Union of Texas Event Center. Tickets are already on sale. ज़्यादा time है नहीं, क्योंकि मतलब 20 दिन ही बचे concert में, तो अभी आप tickets ले लो अपनी जल्दी जल्दी. And tickets are available at Ticketmaster. अगर आपको और information चाहिए, then you can reach out to 855-360-SHOWS, या फिर type करिए Revolution Sonu Nigam, कहीं पे आप Google करेंगे तो आपको मिल जाएगा. And of course, Funasia is the exclusive media partner for this event, so make sure you get your tickets soon, okay? Now, without further ado, let's go into the next part, guys. We have a little request before we go into more of the relationship and financials conversation. Ye gana aapke liye, aapne jinhone bhi call kiya tha.

तो गाइज, जब रिलेशनशिप्स की बात आती है और सीक्रेट्स की बात आती है, फाइनेंशियल सीक्रेट्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो सीक्रेट्स दैट पीपल कैन कीप फ्रॉम ईच अदर. एंड हमको लगता है कि कई बार हमें लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, इट्स नॉट अ बिग डील. बट यू नो वॉट, कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें बढ़ जाती है बिकॉज इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर स्पेंडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ योर पार्टनर. इट्स अबाउट आपने बताया क्यों नहीं. वहीं पर ट्रस्ट आपका टूट जाता है. आपकी जो रिलेशनशिप की जो सॉलिड बॉन्ड होती है, जो एकदम ट्रस्ट वाली नींव होती है, वही टूट जाती है वहीं पे. दिस इज़ वाई फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जितनी आपकी रिलेशनशिप सीरियस होती जाती है लाइफ में, उतना फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू डोंट नेसेसरली नीड टू हैंड समबडी योर बैंक पासवर्ड. ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड डेट पर हो और उनको आपका यू नो अपने चेकिंग अकाउंट का पासवर्ड दे रहे हो, या फिर अपना क्रेडिट स्कोर बता. चलो क्रेडिट स्कोर तो बता सकते हैं, मतलब यू नो इफ यू आर प्राउड ऑफ इट, अगर 800 क्रेडिट स्कोर बना लिया आपने देन इट्स ग्रेट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट खोल के दिखा दो, ये करो. मैं एक फनी स्टोरी सुनाती हूँ. मेरे मेरे रिश्तेदार ही है, मैं नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली उनका नाम. तो एक्चुअली नाम तो वैसे भी मैं नहीं बोल रही. तो मेरी एक आंटी है, ठीक है. अब वो मुझे कहती है, ये बहुत साल पहले की बात है, जब उनकी नई नई शादी हुई थी ना, अरेंज मैरिज हुई थी, तो सुहाग रात वाली रात पे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मेरे चाचा जी ने पता क्या किया, उनको अपने सारे फिक्स डिपॉजिट्स निकाल के दिखाए. कहते देखो तुम कितनी अमीर हो, ये सारे मेरे फिक्स डिपॉजिट हैं. और मेरी चाची कहती है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट माई फर्स्ट नाइट टू स्टार्ट ऑफ लाइक दिस. एंड शी वॉज मीटिंग हर हस्बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहले के ज़माने में अरेंज मैरिज की शादी वैसे ही होती थी. फर्स्ट इंटरेक्शन उनका ये था, देखो तुम कितने सारे पैसों की मालकिन बनने वाली हो, ये सारे मेरे फिक्स डिपॉजिट हैं. सो आई मीन यू डोंट नीड टू डू दैट ऑन अ थर्ड डेट. ऑफ कोर्स फर्स्ट नाइट ऑफ मैरिज श्योर, वाई नॉट, लेकिन थर्ड डेट पे तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है. जब मैरिज की बात आती है, बाइंग प्रॉपर्टी, हैविंग चिल्ड्रन, कंबाइनिंग फाइनेंसेस, तब ये अलग बात है. देन यू नीड टू शेयर ऑल दिस बिकॉज यू प्रॉबली नीड टू नो एज ए कॉमन गोल विथ योर पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, या फिर अगर आप मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स ले रहे हैं. लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन बिलीव इन मैरिज दीज डेज. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कोहैबिटिंग, लिव इन कर रहे हैं, देन दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर. दैट मीन्स यू हैव टू डिस्कस इनकम, यू हैव टू डिस्कस डेट, यू हैव टू डिस्कस कि सेविंग्स कितने हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस क्या है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, स्पेंडिंग हैबिट्स क्या होती है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है. बिकॉज लव तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, प्यार तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमें प्यार के साथ ना प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए, क्योंकि प्यार डज नॉट एलिमिनेट फाइनेंशियल रियलिटी. ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा. हर चीज़ें बॉलीवुड मूवी होती तो कितना आसान होता.

दोस्तों, गणेश चतुर्थी आ रही है एंड यू कैन सेलिब्रेट इट टुगेदर विद फन एशिया, पैशन हेल्थ, प्राइमरी केयर, इंश्योर, होम लोन्स और उमर ख्वाजा जी. टुगेदर दे ऑल आर प्रेजेंटिंग मेक योर गणेशा विद फन एशिया नेटवर्क. एग्जैक्टली गाइस, तो ये बच्चों के लिए ये इवेंट है, गणेश चतुर्थी का स्पेशल इवेंट है सिर्फ बच्चों के लिए. फ्रॉम द एज 5 to 12 दे कैन क्रिएट देयर ओन क्ले गणेशा. इट्स सच अ फन वर्कशॉप, इट साउंड सो ग्रेट, स्पेशली अगर आपके वीकेंड के कोई प्लान्स नहीं है एंड यू आर लुकिंग टू डू समथिंग फेस्टिव, देन दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी. कब हो रहा है ये वर्कशॉप? सैटरडे सेप्टेम्बर 12th को. स्पॉट्स बहुत कम है तो जल्दी जाइए एंड रजिस्टर योर चाइल्ड फॉर दिस वर्कशॉप. यू कैन लॉग ऑन टू गणेशा डॉट फन एशिया डॉट नेट एंड लेट योर चाइल्ड इनर क्रिएटिविटी शाइन. एग्जैक्टली गाइज, तो डोंट वरी, आप जल्दी जल्दी साइन अप कर लीजिए बिकॉज बहुत मजा आने वाला है. ओके, वी विल ऑल बी देयर. तब तक के लिए आई एम इन अ फेस्टिव मूड. ये गाना आप सबके लिए, जस्ट फॉर दिस फेस्टिविटीज.

तो गाइज यस दिस इज फन एशिया रेडियो 104.9 FM एंड यू आर स्टिल लिसनिंग टू इपी द हिपी ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. एक बार मैं बोल चुकी हूँ. और ये शो हमारा कौन सा है? इट इज एन इवनिंग इन डैलस. दैट्स राइट गाइज. तो थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग टू लिसन. रात के 9 बज चुके हैं. आई नो आप यू गाइज आर वाइंडिंग आउट, प्रॉबेबली गेटिंग रेडी टू गो टू बेड. हाउ एवर, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, सोने का टाइम का ध्यान रख रहे हैं, देन यू नो वॉट यू नीड टू डू. इवन इफ यू डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस, यू नीड टू गो एंड हेड डाउन टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज यू नो वॉट, दे हैव एन अमेजिंग थिंग. दे हैव अ अमेजिंग प्राइमरी केयर प्लान. ओके, इट्स कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ. स्पेशली इफ यू आर लाइक यू नो अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर, स्मॉल बिजनेस ओनर, आपको अपने ऑफिस से लाइक सस्ते में इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है. एंड वी ऑल नो दैट अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी एक्सपेंसिव. सो इफ यू डोंट हैव एनी ऑफ दैट एंड यू आर स्टिल फिगरिंग आउट कि भाई डॉक्टर के पास तो जाना है, तबियत कभी भी खराब हो सकती है, वॉट टू डू, देन यू, दिस इज द प्लान फॉर यू. योर मेंबरशिप इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप, प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीजेज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, telehealth when appropriate, care coordination, plus 20% savings on eligible self-pay labs, imaging and diagnostic services. Call 214-666-6259 or visit passionhealthphysicians.com. Honestly guys, this sounds like a way better plan than paying like $400 or $300, whatever it is you pay for your health insurance. So why don't you go and try this out? Maybe this is a better idea. Okay, this program is not a health insurance, guys. I just want to make sure that you guys know this. It is not a health insurance. It is a plan. The eligibility restrictions also apply. So make sure you read all the information or at least ask them. Okay? Without further ado, हम जैसे relationships की बात कर रहे थे, अपने ध्यान रखते रखते relationships का भी ध्यान रखना चाहिए. तो one of the main thing that, you know, sometimes we are often asked these days, especially in modern relationships, is whether you want to look at financial independence or financial partnership. What do you think? Of course, traditionally, everything is like on the basis of partnership. What's mine is what's yours, right? वो सब लोग हमेशा से बोलते हैं. लेकिन आज के ज़माने में we are also looking at situations where this is not the most ideal situation. People are suffering because of it. And I'm not just talking about the guys. I'm talking about the girls, guys. I mean, दोनों तरफ से. Sometimes it may not be the best thing because कई बार आप प्यार में तो पड़ जाते हो, but you never know, maybe your partner, जिसको आप प्यार कर रहे हो इतना, एंड यू थिंकिंग लाइक ओके आई एम गोना बिल्ड अ लाइफ विद दिस पर्सन, मे बी दे कम विद हंड्रेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑफ डेट, क्रेडिट कार्ड डेट, फॉर व्हाट, यू नो, मे बी दे हैव बैड स्पेंडिंग हैबिट्स या जो भी है. यू डोंट वॉन्ट टू टेक ऑन दैट. आई मीन समटाइम्स यू नीड टू थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली, राइट? सो हियर इज अनदर डिबेट दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज. डू यू थिंक मॉडर्न कपल्स शुड हैव जॉइंट बैंक अकाउंट्स और सेपरेट अकाउंट्स? Some couples like to put everything together. Some couples like to keep it separate. और वो एक दूसरे को जैसे roommates की तरह rent नहीं देते, वैसे ही वो करते हैं. And honestly, there is no one correct answer really. Whatever works for you, honestly. I mean, अगर आपके लिए separate account ज़्यादा better काम करता है, then I think you should do it. But अगर आपको लगता है कि नहीं, you feel कि नहीं, why is it separate? We are not roommates. We are

वर्क्स फॉर यू ऑनेस्टली. आई मीन अगर आपके लिए सेपरेट अकाउंट ज्यादा बेटर काम करता है देन आई थिंक यू शुड डू इट. बट अगर आपको लगता है कि नहीं यू फील कि नहीं वाई इज इट सेपरेट वी आर नॉट रूममेट्स वी आर पार्टनर्स देन यू नो देन मे बी यू शुड कंबाइन. वॉट मैटर्स इज वेदर द सिस्टम वर्क्स फॉर बोथ ऑफ यू ऑल. ओके अ कपल माइट हैव वन जॉइंट अकाउंट फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस विच हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट. दे हैव एक जॉइंट अकाउंट for their household expenses and unka ek separate individual account bhi hota hai for personal spending. Another couple might combine everything. Another might keep completely separate finances. The danger isn't necessarily ki separate accounts hai. The danger is financial secrecy or financial control. Ek main story batati hu meri friend ki. She was in love with this guy. I mean they both were in love with each other. They really wanted to get married but she had around $10,000 of credit card debt. और वो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उसको प्रपोज नहीं कर रहा है. वो बहुत सालों से रिलेशनशिप में है. वो लड़का उसने सीधा सीधा उसको बोल दिया भाई तुम्हारे पास $10,000-12,000 का क्रेडिट कार्ड डेट है. मैं तुमको प्रपोज नहीं करूँगा जब तक तुम अपना डेट नहीं चुकाओगे. और वो कह रही है उसको समझ नहीं आ रहा है कि डेट कैसे चुकाएं क्योंकि समहाउ यू नो शी वॉज इंटरनेशनल लाइक मोस्ट ऑफ अस. उसको किसी ने बताया कि नहीं क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करना होता है. क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है. सो शी केप स्पेंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड बट शी कुडंट पे इट बैक यू नो एंड नाउ शी वॉज इन सो मच डेट एंड हर पार्टनर इज नॉट गोना मैरी हर बिकॉज शी हैड सो मच डेट. तो इस तरह की सिचुएशन बहुत होती है. वी विल टॉक मोर अबाउट दिस आफ्टर द सॉन्ग.

और ये सब की बातें करते हुए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कि यू डोंट हैव टू आस्क हु यू आर विथ, यू डोंट हैव टू आस्क कि भाई यू नो व्हाट आर योर मनी सीक्रेट्स या व्हाट आर योर मनी डायल्स और व्हाट एवर. यू हैव टू ट्राई एंड फिगर आउट ओके व्हाट आर वी डूइंग. व्हेन यू आर डेटिंग समबडी यू प्रोबेबली आस्क जो नॉर्मल क्वेश्चन सब पूछते हैं, डू आई फाइंड देम अट्रैक्टिव, डू वी हैव केमिस्ट्री, डू वी हैव फन टुगेदर, आर वी हैप्पी, यू नो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये तो सब पूछते ही हैं, दोज आर लाइक योर बेसिक क्वेश्चन. बट इवेंचुअली घूम फिर के इस बात पर भी आ जाती है कि हाउ डू वी कम्युनिकेट, कैन वी हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, डू वी हैव सिमिलर वैल्यूज, कैन वी फाइनेंशियली बिल्ड टुगेदर. बिकॉज रिलेशनशिप सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, दे आर अल्टीमेटली अबाउट पार्टनरशिप. ओके एंड पार्टनरशिप मीन्स मेकिंग डिसीजंस. समटाइम्स कुछ डिसीजंस मुश्किल होती हैं, समटाइम्स मे बी वन पर्सन अर्न्स मोर, मे बी वन पर्सन अर्न लेस, एंड देन यू नीड टू फिगर आउट हाउ डू वी मैनेज ऑल ऑफ दैट. ठीक है, मे बी वन पर्सन ग्रू अप बिलीविंग कि पैसे सिर्फ बचाने चाहिए, तो दी अदर पर्सन सेज कि नहीं भाई मुझे तो सिर्फ पैसे उड़ाने हैं, बिकॉज मैंने सारी जिंदगी अपने पैसे मेरे पास आई वॉज यू नो. Maybe the person comes from like not a very well off background, and so now when they finally have money, they want to spend it. Okay, maybe one person wants a luxury lifestyle. Maybe the other person is like, nahi, I want financial freedom in my retirement, so I will, you know, try and save right now. These things they must be discussed. Lekin uske pehle aap pretty ladies ke liye ye gana.

You know, I love Bollywood movies for one and only reason. Pata hai wo kya? Because it automatically puts you in like this delusional reality, jo kabhi possible nahi ho sakti. Aapne socha Pretty Woman? Sabne wo movie dekhi hai. Kal ho na ho, theek hai? Usme Pretty Woman ka jo gana baj raha tha abhi, usme dikhaya gaya hai. Wo bandi ke liye ga raha hai. Wo beach raaste mein khade hoke apni neighborhood mein. Wo ek taxi aa rahi hai. Taxi ke upar chad gaya. Aaspaas ke sare log ek saath milke gana wana ga rahe. Now yes. ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, होता है, लेकिन वो प्लान करके होता है. ये आई विश स्पॉन्टेनियसली ऐसी ब्लॉक पार्टी शुरू हो जाती, कोई कहता कि चलो आज मैं लड़की के लिए गाना गाऊंगा, पूरी ब्लॉक मिलके हम गाएंगे और टैक्सी के ऊपर खड़े होकर डांस करेंगे और टैक्सी वाला भी खुश हो जाएगा कि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उसके गाड़ी पर खड़े होकर डांस कर रहे हैं. तो मतलब काश लाइफ ऐसी होती नहीं कई बार. तो ये नेक्स्ट गाना गोज आउट टू शफी. शफी, थैंक यू फॉर कॉलिंग and talking to me. And Shafi was like, ki bhai tum purane gaane nahi bajate, like you never play 80s ka gaana. Maine kaha nahi, 80s to I'll play 80s ka gaana sometimes. So this one is for you. This is one of my favorite 80s tracks, and I've also tried to do the hook step so many times at my house by myself, but I can never do it. I think it's called The Running Man, if I'm not mistaken.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: भूख लगी
4: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
11: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Funasia.
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen, Jago.

तो गाइज अपना ध्यान रखते रखते अभी अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना है, स्पेशली क्योंकि हम फाइनेंसेस की बात कर रहे थे. माई टाइम इक्विटी लेड बाई CPA सुधीर पाए हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए या रिटायरमेंट के लिए, या फिर यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट जस्ट बिकमिंग द नेक्स्ट वेल्थी पर्सन, माई टाइम एक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशन डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. विजिट माई टाइम एक्विटी डॉट कॉम और कॉल 4697021272 टूडे एंड सी वॉट दे कैन डू फॉर योर मनी. यू नेवर नो, यू माइट बी सरप्राइज. तो गाइज इट इज 9:39 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ सिर्फ 20 मिनट और रहने वाली हूँ. आई होप यू एन्जॉय टूडेज शो. अभी थोड़ी सी बातें और करेंगे, लेकिन उसके पहले ये गाना.

गाइस, टेक्सास प्राइमरी केयर पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आवर कम्युनिटी एंड नाउ दे आर ग्रोइंग विद ए ब्रांड न्यू नेम और एक और फ्रिस्को लोकेशन. और इसका नाम पता है क्या है? लनॉक्सी मेडिकल, विच इज़ फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. तो अगर आपको अर्जेंट केयर की ज़रूरत है, प्राइमरी केयर की ज़रूरत है, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैंस, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स या फिर हिमालयन मेडस्पा सर्विसेज, ये सारी चीज़ें एक रूफ के अंडर मिलेगी आपको. दे आर 7 डेज अ वीक, दे आर ओपन फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. आप वॉक इन कर सकते हैं. एग्जैक्टली गाइज, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, 6 महीने वेट भी करने की ज़रूरत नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए. सो यू कैन गो गेट योर हेल्थ टेकन केयर ऑफ. नेक्स्ट गाना जो मैं आपके लिए बजा रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम ऑफकोर्स द एब्सोल्यूटली अमेजिंग सीरीज एंड आई एम ऑलरेडी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन. दिस वन इज़ कॉल्ड मुसाफिर कैफ़े. अगर आपने देखी है मुसाफिर कैफ़े तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो प्लीज़ गो स्ट्रीम दिस सीरीज़ बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटिफुल. इट्स लाइक अ लॉट ऑफ, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ अनफिनिश्ड लव स्टोरीज जिसमें प्यार तो भरपूर है लेकिन कई बार उसका यू नो हैप्पी एंडिंग नहीं होता है. समटाइम्स सम लव स्टोरीज डू नॉट एंड इन हैप्पीली एवर आफ्टर. सम लव स्टोरीज आर जस्ट you know, you reminisce them for the beauty that they gave you or the joy that they gave you or the sorrows that they gave you. Kuch log apne personal goals ko prioritize karte hain pyar ke upar, which is totally fine by the way. I totally support that. Kuch log pyar mein itna pagal ho jate hain ki wo anxious hoke kai baar propose kar baithte hain because they don't know what else to do. Wo anxious attachment ka, arre kahin ye mujhe chhod ke to nahi chala. Humne baat kari thi, yaad hai aapko, anxious attachment, avoidant attachment, this is a perfect example of that. So you watch it and then you let me know, or actually just watch it. This is the song called Kaafi Hai Na from Musafir Cafe.

थैंक यू एवरी वन, आई होप यू हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. मैं आपसे मिलूंगी एक्चुअली मंडे नहीं, मैं संडे को भी आ रही हूँ इस हफ्ते, अगले हफ्ते 6 से 8 बजे, एंड देन मंडे से हमारा रेगुलर स्केड्यूल 7 से 10 बजे. तो दिस इज इपी द हिप्पी साइनिंग ऑफ ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM. हैव ए वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग.

0: Marshmallow. नाम तो सुना होगा।
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Ji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
5: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
4: Par yahan sari arrangements manage karna bhi to kitna mushkil hoga.
5: Hello, tum Dallas mein ho. Yahan koi bhi event karna super easy hai. Especially जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
4: सच में सब संभालेंगे.
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. हैव यू थॉट अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ यू और अ बिजनेस पार्टनर पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
6: Sign milna mushkil hai, lekin pleno mein जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
10: तुमसे मिलके दिल का है.
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
4: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: बॉलीवुड टैग फन एशिया।
1: पंडित जी, दूल्हा है दुल्हन है, हम हवन लगवा के फेरे ले लें।
2: ये मैं पंडित दिखता हूँ नहीं, मेरी तो बाहर आलू चाट की रेडी है।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
3: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेशिया रेडियो।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

जहे नसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online third through sixth grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एंश्योर होम लोन्स एंड ओमर ख्वाजा प्रेजेंट Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

आपके सुहाने सफर का साथी फनीशियर रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: de hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है,
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
8: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 ईयर.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the show. Let's go ahead and get started with our program on this lovely Friday morning. It's the 4th of September. Sabse pehle tareef us upar wale ki jisne duniya banayi, chand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम ऑन दिस जन्माष्टमी डे. विशिंग ऑल ऑफ यू द वेरी बेस्ट. आप सबको तथा आपके परिवार को श्री कृष्ण के जन्मदिवस की हमारी ओर से शुभकामनाएं आदर व प्रेम पूर्वक बहुत प्यार से भेज रहे हैं. कृपा आप सब स्वीकार कीजिए. हमारी श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि करुणा निधान आपके सर्वधर्म निर्विघ्न संपूर्ण कराएं. हैप्पी जन्माष्टमी.

0: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
5: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
4: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: Call the SBA Loan Experts.
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: Call the SBA Loan Experts.
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: Call the SBA Loan Experts.
6: Construction हो या renovation, business खरीदना हो या refinance कराना हो, for all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
8: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
9: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
10: डील कहाँ?
9: सिंपल पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
10: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है.
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ

0: कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
2: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

Thank you.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ।
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ।
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
5: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
6: Dude, life mein kuch aisa karna hai, jisme main front page pe rahun.
7: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
6: Kaise?
7: Page 3 eatery?
6: No, not another restaurant again.
7: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
6: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
8: Page 3 eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: अरे यार, घर मिल गया।
13: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
11: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
13: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
11: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
14: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
15: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
16: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

0: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
1: Ocho.
2: Hoko.
1: Ocho.
2: Hoko.
1: Ocho.
2: It's Hoko.
3: अरे बस भी करो यार.
2: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
3: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
4: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
5: ये तारा वो तारा हर तारा.
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
6: How may I help you?
7: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
6: Fear not, we have the perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
7: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
4: Simple. Basera Grand. One destination, double the flavor.
8: Matlab crispy golden dosa?
4: Yes. Rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
8: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
7: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.
9: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
10: तुझे देखा तो ये जाना सनम.
11: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज. DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhumiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Documents ya parcel bhejni hai?
2: हाँ.
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ.
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ.
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
4: वी नीड टू टॉक.
5: अब क्या हुआ?
4: Nothing. It's not you.
5: Oh no.
4: It's the distance.
5: Distance? We live 10 minutes apart.
4: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
6: क्या आपको business खरीदने के लिए loan चाहिए?
7: Call the SBA loan experts.
6: क्या आप franchise शुरू करना चाहते हैं?
7: Call the SBA loan experts.
6: क्या आपको अपने business के लिए working capital की जरूरत है?
7: Call the SBA loan experts.
6: Construction हो या renovation, business खरीदना हो या refinance कराना हो, for all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA loan experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
11: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
12: तुमसे मिलके दिल का है.
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
11: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
13: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग.
14: हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग. आपका स्वागत है फन एशिया 104.9 FM पर और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को. और आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मौका मिला है मुझे स्टूडियो में आकर के शो करने का. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. सबसे पहले आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप अपने परिवार के साथ इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाएं. तो आज के शो की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ.

कृष्णा की फेवरेट माखन मिश्री, कृष्णा की फेवरेट बांसुरी, कृष्णा की फेवरेट गोपियाँ और कृष्णा हम सबके फेवरेट जिनको हम कहते हैं कान्हा, आज उनका है जन्मदिन और उसी का सेलिब्रेशन यहाँ से कर रहे हैं थोड़ी देर स्टूडियो से। कुछ प्यारे प्यारे बॉलीवुड में भी गाने बने हैं जो कि कृष्ण और राधा की बातों पर आधारित हैं, तो उन्हीं गानों को लेकर आप तक आ रही हूँ। तो प्लीज़ हमारे साथ स्टूडियो में बने रहिए और सुनते रहिए ये प्यारे प्यारे गाने।

0: माफी चाहूंगी, मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू है। फिलहाल ये गाना आप लोगों के लिए।
1: सकते।

0: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
1: Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
3: भूख लगी
4: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
7: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
8: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
12: Wait, itna sab aur price?
11: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
13: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present. Make your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
14: 9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
15: Non-stop entertainment at Fun Asia 104.9 FM. और आपका स्वागत है छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को Fun Asia पर. और आज Fun Asia के स्टूडियो से हम कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कुछ प्यारे खूबसूरत गाने लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जो कि कृष्ण पर, कृष्ण और कान्हा पर और राधा पर और उनकी रासलीलाओं पर बनी है. तो शो को आगे बढ़ाते हैं. ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी, एक्सपीरियंस द डिवाइन स्पिरिट ऑफ ब्रज विद मेलोडियस वॉइस ऑफ आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी जी, प्रेजेंटिंग चीर जिवे लाल कन्हैया, अ सोलफुल भजन दैट ट्रांसपोर्ट्स यू टू द जॉयस सेलिब्रेशन एट नंद भवन वेयर द बर्थ ऑफ कन्हैया फिल्स ऑल द ब्रज विद हैप्पीनेस. Presented by Divine Records and Vraj Ras Productions, the official music video released on September 4th, which is today, and let's become a part of this divine celebration. Ye raha wo khoobsurat sa bhajan jo hum aapke liye leke aa rahe hain.

नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन चल रहा है स्टूडियो से और मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया है। और कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम चाहते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसा गीत भजन सुनना चाहते हैं तो मेरे इस सेगमेंट में जो कि मैं अगले आधे घंटे और चलाने वाली हूँ उसमें आप प्लीज़ कॉल करके उन गानों की फरमाइश कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। प्लीज़ कॉल करिए और अपनी फरमाइशें दीजिए। फिलहाल ये खूबसूरत सा गाना जिसकी फरमाइश आई है कामिनी जी की तरफ से।

कृष्ण का जन्म एक काली अंधेरी रात को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ था, और अष्टमी के दिन हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार हम सबको पता है कि उनके जो मामा थे कंस, उनको ऐसी प्रोफेसी हुई थी कि उनका मृत्यु जो है उनके का कारण उनकी बहन का बेटा बनेगा, और उसके कारण उसने ये निश्चय किया कि वो अपनी बहन और उनके जीजा के पुत्र को जीने ही नहीं देगा। ये कहानी बहुत सिंपल है, बट ये जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं या कृष्ण की कहानियां हैं या गीता का जो हम सारा गीता का सार सुनते हैं, ये सब हमारे जीवन में आज भी हमें किसी न किसी तरह से अफेक्ट करता है, किसी न किसी तरह से हमें इन्फ्लुएंस करता है। और हमारे कई बार ऐसा होता है कि ये सब सुन के ना हमारे जीवन में जब कठिनाइयाँ हैं तो हमें राह भी दिखने लगती है। बोलो।

0: तो चलिए जल्दी से एक छोटा सा कंपटीशन करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पे, तो देखते हैं कि मुझे अगला कॉल कृष्ण जी के कौन से लोकेशन से आने वाला है। मतलब उनका जन्म मथुरा हुआ, वो वृंदावन में पले बड़े, और द्वारका में उनका उनका जो उनकी जवानी थी या शादी के बाद की जिंदगी वहाँ बीती। तो इनमें से कौन से इलाके वाले में से लोग मुझे पहले कॉल करते हैं, देखते हैं कोई कॉल आता भी है या नहीं। मथुरा, वृंदावन और द्वारका वालों, फोन उठाओ और कॉल करो।
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
4: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
11: जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग।
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को। और ब्रेक पे जाने के पहले मैंने कहा था कि कौन पहले फोन करेगा, कौन है कृष्णा का सबसे प्रिय, मथुरावासी या फिर द्वारका वाले। तो भाई मथुरावासी जो है वो यूपी से है और द्वारका वाले गुजरात से है, तो भाई हमारे गुजरात वालों ने जीत लिया है ये कॉम्पिटिशन। और हमारे प्रिय कामिनी जी का कॉल आ गया जो कि गुजरात से हैं, एंड दिस वन्स फॉर यू कामिनी जी।

गो गो गो गोविंदा, कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पर। शो को आगे बढ़ाते हैं और बातें करेंगे इसके बारे में, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विथ ड्रीम होम मॉर्गेज। जी हाँ, सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इन टू रियालिटी विथ पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। लाइसेंस इन ऑल 50 states, their experienced team is committed to finding right loan options tailored to your needs, whether you're buying your first home, upgrading or refinancing. Start your home ownership journey with confidence today. Aap inko call kar sakte hain 972-245-5626 pe, ya fir aap visit kar sakte hain inka website dreamhomemortgage.com. Zyada jankari ke liye, Dream Home Mortgage, making dream homes happen. To bas agar ghar khareedne ki soch rahe hain, call Dream Home Mortgage. शो को आगे बढ़ाते हैं। जन्माष्टमी पे बात कर रहे थे हम, तो जन्माष्टमी भारत के हर यू नो हर प्रदेश में, हर स्टेट में मनाया जाता है, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि अगर हम अगर महाराष्ट्र की बात करें, जो हम गाना सुन रहे थे, तो वहाँ पर दही हांडी होती है बहुत धूमधाम से। गुजरात में इसको एक अलग तरीके से मनाया जाता है। यूपी में उनके कृष्ण जन्म को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मोस्टली सब में कॉमन होता है रात में 12 बजे का सेलिब्रेशन, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म जो है वो बोलते हैं ना, एक बहुत ही काली अंधेरी रात थी जब हुआ था, तो मिडनाइट पे हुआ था। और मुझे याद है किस तरह से ना हम लोग दादी के साथ, मैं दादी वाली मेमोरी कहूँगी, क्योंकि वही है जब हम बड़े हुए तो घर से निकल गए, मम्मी आज पूजा करती हैं घर पे, बट दादी के साथ वाली मेमोरी है जब हम लोग दिन भर तैयारी करते थे। मतलब मेरी दादी स्क्रैच से सब कुछ करती थी, कान्हा जी के कपड़े बनाना, उसके बाद से हम रुई लेकर के दादी के साथ बैठते थे, हम बत्तियां बनाते थे साथ में, शाम का प्रसाद बन रहा होता था और फास्टिंग होती थी तो एक्साइटमेंट होती थी वो फास्ट के खाने की, कि अरे यार आज स्पेशल खाना बनेगा, तरह तरह का हलवा बनेगा, पूड़ी बनेगा और खूब सारा व्यंजन खाने मिलेगा। तो दैट मेमोरी स्टिल स्टेज विथ मी एंड आई ट्राई टू कैरी अ पार्ट ऑफ इट अपने लाइफ में। मतलब यहाँ पर अपने घर में छोटी सी पूजा करके, वो सारे स्टेप्स फॉलो करके जो दादी किया करती थी, इसी तरह से मनाते हैं। और रात को 12 बजे मुझे याद है किस तरह से हम नींद में होते थे पर जगे रहते थे, क्योंकि 12 बजे झूला झुलाना होता था कान्हा को, और थाली बजा करके, चम्मच और थाली से ज़ोरों से आवाज़ करके भजन और आरतियां करते थे। तो ये है मेरी मेमोरी कृष्ण जन्माष्टमी की। आप मुझे ज़रूर बताइए कॉल करके कि आपके यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर ऐसा कुछ होता है, अगर कुछ और अलग होता है तो वो भी हम जानना चाहेंगे और अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे।

Okay, so moving ahead, first of all, I would like you all to know that this part of our show is proudly sponsored, proudly brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the United States. Whether you are an individual, startup, or an established business, AG Fintechs offers innovative financial solutions tailored to your needs, from bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliation to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services. They help keep your finances organized, compliant, and future ready. They are trusted, efficient, and committed to your success. AG Fintechs is your partner in building a stronger financial future. आप उनको कॉल कर सकते हैं 469-942-9888 और विजिट agfintechs.com. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स. मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि बड़ा फेस्टिव मूड बना दिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है. थैंक यू आप लोगों ने कॉल किया और बोला इसके लिए. बट यस, मेरे लिए फेस्टिविटीज स्टार्ट होते ही मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है. मतलब बिल्कुल हम अर्ली राइजर बन जाते हैं, घर में सारा काम टाइम पे होने लगता है, पूजा पाठ होने लगती है. सो ऐसे फील आता है, यू नो, थोड़ा सा इंडिया वाला फील आने लगता है. फेस्टिविटीज़ का फील आना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए घर में ना. और अभी तो त्योहारों का सिलसिला शुरू हुआ है. सावन खत्म हुए, रक्षाबंधन आई, उसके बाद जन्माष्टमी है, और ऐसे एक एक करके त्यौहार आते ही जाएंगे. अब तो अगला 2-3 महीना तो हम लोगों का कैलेंडर्स बिल्कुल जैम पैक्ड रहने वाला है. कभी कहीं पे कहीं कभी कहीं पे वर लक्ष्मी की पूजा, कभी कहीं पे कन्या पूजन, बहुत चलता रहेगा ये सब. बट या टॉकिंग अबाउट जन्माष्टमी, सो बीइंग अ बिहारी, आई हैड द प्रिविलेज टू स्टे इन डिफरेंट स्टेट. प्रिविलेज कहूँ या फिर फोर्स्ड प्रिविलेज कहूँ, पर ये था. तो हम महाराष्ट्र में भी रहे हैं. आई हैव डन माई स्टडीज फ्रॉम पुणे, एंड वहाँ पर दही हांडी का उत्सव होता है, और मैं बता नहीं सकती हूँ किस धूमधाम से और जोर शोर से ये दही हंडी का उत्सव हुआ करता था. रास्ते जाम हो जाएंगे, अलग अलग टोलियां, ग्रुप्स बना बना के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और वो दही हंडी इतनी ऊंची ऊंची हाइट्स पे होती है, और उसको तोड़ने के लिए कॉम्पिटिशन होता है, एंड गजब का एक माहौल होता है. वहाँ रही हूँ मैं, हमेशा उस भीड़ में गई हूँ, कभी डर नहीं लगा, कभी कुछ हुआ नहीं है. स्टूडेंट थे, जाते थे. इट वॉज अ मैसिव एंड अ डिवाइन सेलिब्रेशन. सो या एवरी स्टेट इन इंडिया सेलिब्रेट्स जन्माष्टमी इन देयर ओन वे, बट बात वही है कि सब बस अपने तरीके से कान्हा को याद कर रहे हैं.

मशहूर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया बिरज का पाका संभाल तेरी गगरी रे ओ

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
9: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
10: बेटा, 95% आए?
11: हाँ मम्मी.
10: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
12: मेरा?
10: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
12: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
16: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
17: लिया.
16: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
17: नहीं आया.
16: मुझे भी नहीं आया.
18: आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
19: Visit www.sanadainc.com today.
20: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
21: 104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop infotainment.
22: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. ढेरों गानों की फरमाइश आई और सबको लग रहा है कि बिल्कुल फेस्टिविटीज शुरू हो गई है. यस, हम यहाँ इसीलिए तो बैठे हैं फनेशिया के स्टूडियो में, फेस्टिविटीज और जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उसको आप तक लाने के लिए. और आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो बहुत सारे प्यारे प्यारे खूबसूरत भजनों की और गानों की फरमाइश आई जो कि बहुत अच्छा लगा. और हमने किस तरह से चर्चा की कि हर भारत के हर प्रदेश में, हर पार्ट में कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन होता है और बड़ी ही धूमधाम से होता है. चाहे वो महाराष्ट्र में दही हांडी निकाल के हो या फिर मथुरा में कृष्ण जन्म का सेलिब्रेशन हो, मंदिरों को सजाया जाए, चाहे द्वारका में और गुजरात में ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया जाए, तो हर पार्ट में ऐसे ही जन्माष्टमी मनाई जाती है. और अब इतनी दूर क्यों जाएं, मतलब भारत क्यों जाएं, हमारे यहाँ खुद डैलस में कृष्ण जन्माष्टमी की जो पूजा होती है हर घर में, हर मंदिर में बहुत ही धूमधाम से होती है. और हमारे पास तो अब ऑप्शंस हो गए हैं कि हम कहाँ जाएं और कैसे सेलिब्रेट करें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है. मथुरा में कृष्ण जी का जन्मदिन बनता है, गोकुल में नंदोत्सव होता है, वृंदावन में भजन और रासलीला होती है, महाराष्ट्र में दही हांडी होती है, गुजरात में द्वारकाधीश की भक्ति और साउथ इंडिया में कृष्ण के फुटप्रिंट्स और ट्रेडिशनल भोग बनते हैं, छप्पन भोग होता है. और यहाँ पे भी कई सारे मंदिरों में और घरों में लोग ये करते हैं. आसाम में 17 ट्रेडिशन है और नाम कीर्तन होता है और हर स्टेट में अपनी लोकल कल्चर के साथ कृष्ण जी का बर्थडे मनाया जाता है. तो भाई आप कैसे मनाते हैं कृष्ण का जन्मदिन, उससे कोई मतलब नहीं है. बस कृष्ण का जन्मदिन मनना चाहिए, बिकॉज ये ऐसे भगवान है ना जिनसे बड़े कनेक्शन फील होता है, बड़े कूल से लगते हैं, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इनके साथ. इनको कुछ भी अच्छा सा, मीठा सा, प्यारा सा बनाए खिला दो, ये खुश हो जाते हैं. बस डेली इनको माखन मिश्री दे दो, उससे भी ये खुश रहते हैं और अपना प्यार सबको देते रहते हैं.

लता मंगेशकर की आवाज़ में था ये बहुत ही प्यारा सा गाना एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट भजन और मैंने बहुत दिन बाद सुना है एंड आई वुड थैंक माय लिसनर फॉर दिस। उन्होंने कॉल करके इस गाने की फरमाइश करी थी। तो चलिए अशोक को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी, नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग यूनॉक्सी मेडिकल founded by Dr. Mandeep Acharya. Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-ray, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan med spa services all under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. तो आप यहाँ पे वॉक इन कर सकते हैं एनी टाइम पे, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। आई रिपीट द नेम, इट्स Lenoxy Medical। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और मुझे लग रहा है कि मुझे अपना सेगमेंट थोड़ा लंबा करना पड़ेगा बिकॉज इतने सारे खूबसूरत गानों की फरमाइश आई है जो कि कृष्ण और कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े हुए हैं। मुझे प्ले तो करना पड़ेगा, आज के दिन तो कान्हा का दिन है ये, तो कान्हा के गाने तो चलेंगे यहाँ पर। वैसे अभी जब मैं ये गाना सुन रही थी ना, राधा क्यों गोरी वो वाला गाना जो चल रहा था, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मतलब नॉट रिलेटेड टू द सॉन्ग बट एज अ मदर, दैट जब मेरे पास मेरी शादी नहीं हुई थी, व्हेन आई डिड नॉट हैव अ किड, तो उस समय मैं सोचती थी कि यार क्या है, लोग हर जन्माष्टमी में अपने बच्चों को कैसे ऐसे कान्हा बना देते हैं, राधा बना देते हैं। ये थॉट मेरे मन में बड़ा आता था, बच्चे भले ही बहुत क्यूट लगते हैं पर मुझे मॉम्स के एफर्ट्स पे ना कि इतना कुछ ऑलरेडी होता था, उसमें भी मैं देखती थी मेरी सिस्टर इन लॉ को, मेरे आसपास के सब लोगों को, कि वो लगे होते थे कि भी शाम में इनको तैयार करना है। आज व्हेन आई एम अ मदर देन आई रियलाइज यार सच में कितना मज़ा आता है। मैं वेट कर रही हूँ, मैं पूरा का पूरा स्टॉक लेके आई हूँ इंडिया से, क्योंकि मेरी बेटी को खुद राधा बनना था, उसने कान्हा की स्टोरीज देखी हैं और हम कहानियाँ सुनाते हैं उसको, उसको राधा बनना था एंड वो बोली मम्मा आज हम राधा वाला लहंगा पहनेंगे। तो अब जैसे जैसे ना आपके लाइफ में स्टेजेस आते हैं, तो अभी मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पर मुझे खुद से ज़्यादा तैयार होने से ज़्यादा मेरी बेटी को तैयार करने में मज़ा आता है। एंड टुडे इज़ द डे व्हेन आई विल गो बैक होम एंड गेट हर रेडी टू बी राधा।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, यू रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases. From silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
7: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
11: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
12: Omar Khwaja.
13: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
14: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
15: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
16: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
17: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
16: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
17: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
16: Samasya ka pakka samadhan.
17: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0899. और विजिट astrologerishwar.com।
18: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
19: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
20: डील कहाँ?
19: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
20: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है।
21: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
9: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
22: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है। दीवाना।
0: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
22: तुमसे मिलके दिल का है.
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
23: Nation ka fun station, Funny Share Radio.
24: FM Funny Share सुन रहे हैं आप अपनी होस्ट आयुषी के साथ. और ब्रेक पे जाने के पहले हमने बहुत सारी चर्चा की बहुत सारे विषयों पर, विच वॉज अबाउट हाउ डू वी हैंडल स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस हैज़ बिकम इंटरनल पार्ट ऑफ आर लाइव्स. और ऐसे मुझे लगता है अभी मैं यही बात करी थी स्टूडियो में कि कुछ स्ट्रेस दिखता नहीं है. उसमें से एक स्ट्रेस हमारा ये फ़ोन और रील बन गया है, जहाँ पर आजकल मैं ज़्यादा ही इन्वॉल्व हूँ अपने फ़ोन में. और व्हेन आई पिक अप माई फ़ोन एंड कीप स्क्रोलिंग, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे माइंड बॉडी सबको कंट्रोल ये फ़ोन और ये रील कर रहा है. सो टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट शुड नॉट ओवरपावर योर माइंड, एंड दैट इज़ व्हाट हैपनिंग विद अस. एंड हमको तो ऐसा लगता है कि अब ये जो चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई सब चीज़ें आ गई हैं, ये हमें और डम्ब बना रहा है. हमें सोचने के लिए जो अपनी क्रिएटिविटी चाहिए वो ख़त्म कर रहा है. पूरी तरीके से तो नहीं, बट हाँ, जितनी मेहनत हम करते थे, जितना हम रिसर्च करते थे किसी भी चीज़ के ऊपर पढ़ने के लिए, पहले किताबों से ढूंढते थे, फिर इंटरनेट पे जाके गूगल करके जो मेहनत करते थे अलग अलग वेबसाइट से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकालने की, वो भी मेहनत अब हम कम करने लगे हैं. और हम इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के बिल्कुल वश में आ गए. सो आई थिंक वी शुड स्टॉप डूइंग दैट.

It was this beautiful song from the movie Dil Chahta Hai. जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं पर करते तो हैं, इतना पता है मुझे. शो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे प्यारे खूबसूरत गाने आपके लिए लाइन करके रखे हुए हैं मैंने. सो हियर इज दिस ब्यूटिफुल नेक्स्ट सॉन्ग. लेकिन उसके पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए जो आपके काम आ सकती है. तो अगर आप लंच के बारे में सोच रहे हैं, देन आई विल टेल यू अबाउट दिस प्लेस कॉल्ड Page 3 Eatery. टेस्टेड है, ट्राइड है. यहाँ पर सिजलिंग कबाब, फ्लेवरफुल चाट, फ्यूजन बाइट, रिफ्रेशिंग मॉकटेल, सब कुछ मिलेगा. स्टिल, इफ यू स्टिल हैवंट एक्सपीरियंस Page 3 Eatery एट Hub 121, यू आर सीरियसली मिसिंग आउट. दिस इज वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. वेदर इट्स अ ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट और अ फूडी मीटअप, Page 3 ब्रिंग्स द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर्स, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स. विजिट Page 3 Eatery एट Hub 121 and explore more at Page 3 Eatery.com. और September 4th आज के दिन 5 बजे शाम से Page 3 Eatery is serving all dine-in guest serving श्रीखंड टू सेलिब्रेट जन्माष्टमी. अरे वाई, तो स्पेशल है यार, आज बिल्कुल जाना पड़ेगा श्रीखंड खाने यहाँ पर. तो अगर आप भी Hub 21 के आसपास हैं, सो डेफिनेटली ट्राई करें Page 3 Eatery.

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी नाम

शादी की प्लानिंग करनी है, ग्रेजुएशन की प्लानिंग करनी है, हाउस वार्मिंग है या फिर कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशन है, वेनिसा इवेंट्स ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर. वेन्यूज डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड. कॉल हरी बसेरा एट 4694428770. वेनिसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. तो चलिए जल्दी से आपको ना अभी क्या करते हैं, एक गिव अवे दे देते हैं. गिव अवे देंगे इस बार कुमार सानू के अनफॉरगेटेबल 90s का. डैलस, गेट रेडी फॉर अ नाइट फिल्ड विथ म्यूजिक, मेलोडीज, अनफॉरगेटेबल रोमांस एंड प्योर 90s नॉस्टैल्जिया. तो भाई अगर तैयार हो जाइए इसके लिए. द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट आइकॉनिक लव सॉन्ग्स इज कमिंग लाइव टू प्लेनो. एक्सपीरियंस कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट. फॉरगेटेबल 90s ऑन सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. सिंग अलोंग टू द सॉन्ग्स यू ग्रू अप विथ and experience the magic of Bollywood, magic of that era that still lives in our heart. तो भाई seats limited है, parking free है, exclusive meet और greet है. तो आज ही टिकट बुक करिए eventbrite.com पे, sulekhatickets.com पे और कॉल करिए 214-869-2668 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. और प्रेजेंटेड बाई फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप. फिलहाल एक टिकट गिव अवे है. तो भाई पहचानिए ये गाना कौन सी फिल्म का है. सोनू निगम की आवाज, कुमार सानू की आवाज में है, बट फिल्म कौन सा है ये आपको बताना है. तो कॉल करिए, बताइए और लेके जाइए एक गिफ्ट, एक टिकट उनकी शो का.

0: Alicia.
1: बिल्कुल ठीक हैं आप बताइए कैसे हैं अच्छा ओके मुझे लगता है मैंने थोड़ा मुश्किल गाना सुन लिया है
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: अजी सुनते हो?
9: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
10: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
11: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
12: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
13: लैपटॉप में।
12: इन्वेस्टमेंट?
13: गूगल ड्राइव।
12: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
13: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
12: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
14: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
15: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
14: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
16: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
17: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
18: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
19: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
18: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
19: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
18: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
19: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
18: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
20: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
1: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को, और भाई हमें विनर मिल गया, मतलब डैलस की जो लिसनर है ना, मैं क्या ही बताऊं, लोग गाने का बस थोड़ा सा ट्यून सुनते हैं, 10-15-20 सेकंड और जवाब आ जाता है। एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बिकास, बिकॉज ही इज जस्ट वन दिस टिकट फॉर won the ticket for Unforgettable 90s. Badhai ho. Aur gana hai film Naraz ka jo 1994 mein aayi thi.

ये वॉज दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सैयारा और वक्त हो रहा है अब पैकअप करने का. जी हाँ, मेरे बात सुनहरी किरण यहाँ पर होंगी जो आपको कुछ बहुत ही प्यारे और सुनहरे गीत सुनाने वाली हैं आज स्टूडियो से. तो जल्दी से टेक्सास के बिजनेस ओनर्स को बता देते हैं दैट इफ यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी, प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेस सिंस 2002 विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विसेज एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान. You can call them on 844-428-2808. I repeat, it's 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. तो बस आज के लिए टाटा बाय बाय. कल नहीं, अब तो मंडे मिलेंगे. वीकेंड है, अरे भाई एंजॉय करिए, लंबा वीकेंड है, खूब मजा करिए, खूब मस्ती करिए एंड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन. लॉन्ग वीकेंड रोलिंग. चलिए tata bye bye, see you. Your host Ayushi is signing off, leaving you with this beautiful number jiski farmaish aayi thi in the voice of the one and only Sonu Nigam.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
3: हाँ।
2: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ।
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ।
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
5: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
0: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
0: We need to talk.
9: अब क्या हुआ?
0: Nothing. It's not you.
9: Oh no.
0: It's the distance.
9: Distance? We live 10 minutes apart.
0: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
10: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
11: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Funny Share Radio. Sun rahe hain aap. Main hu Kiran aapke saath. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Thank you, Ayushi, for an absolutely beautiful show. Funny Share aapko rakhta hai entertained as well as informed 24/7, 365 days a year. Hum rehte hain aapke saath aur aap bhi hamare saath rehte hain 972-235-5555 ke through. To ji, aaj aap soch rahe hain ki ye jadoo te जादू तेरी नजर का जो म्यूजिक आ गया है ये जल्दी कैसे बज गया. 2:30 बजे से 5 बजे तक होता है मंडे थ्रू फ्राइडे, लेकिन आज है जी हमारा लकी डे, मेरा लकी डे, क्योंकि मुझे आपके साथ मजीद डेढ़ घंटा स्पेंड करने का टाइम, एक्चुअली दो घंटे डेढ़ घंटा या स्पेंड करने का टाइम मिल रहा है. मैं आपके साथ 1 बजे से लेकर और 5 बजे तक आज मौजूद हूँ. और आप जानते हैं कि जब सुनहरी किरण का टाइम आता है तो फिर फ्लेवर्स खट खट करके बदल हैं. तो पहला 1 घंटा विल बी डेडिकेटेड टू कवालीज. द सेकंड आवर यानी कि 2 से 3 तक आपके लिए लेके आऊंगी मिक्स पॉट, कुछ नए गाने, कुछ पुराने गानों से हम शुरुआत करेंगे. और पुराने गाने से जो मुझे कुछ सुन के नया गाना याद आता है वो मैं आपके लिए प्ले करती हूँ. आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं. यू कैन बी एन एब्सोल्यूट फुल फ्लेज पार्टिसिपेंट इन दिस 972-235-5555. और फिर 3 बजे से 4:30 बजे तक होगा किड्स जंक्शन बच्चा पार्टी. तमाम फोन कॉल्स बच्चों के लूंगी और उनकी फेवरेट रिक्वेस्ट प्ले करूंगी. और फिर 4:30 से 5 बजे तक होगा चिल्ड्रन पार्टी. जी हाँ, आप ही में से कोई एक बच्चा आपके बच्चों में से हमारे साथ कनेक्टेड होता है, मेरे साथ चिल्ड्रन पार्टी को होस्ट करता है. दिस इज आवर वे ऑफ गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी एंड टू द लिटिल किड्स हु पार्टिसिपेट इन किड्स जंक्शन. इट इज माय वे ऑफ से thank you to them for being such brilliant participants and listeners of Fun Asia Radio and specially Kids Junction with Sunehri Kiran. So ye hua pure din ka khasa, bahut kuch hai aapke liye lined up. Thank you so much for connecting and let's begin.

और इसी के साथ अगर आपको कुछ घर जैसा खाना खाने का दिल कर रहा है लेकिन घर पे पकाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, कई दिन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल मूड नहीं होता कुकिंग का और दिल करता है कि कुछ बाहर से आ जाए, लेकिन घर जैसा जायका होना चाहिए, नॉट दोज हैवी फीलिंग फूड, तो फिर मैं आपको बताती हूँ तंदूरी फ्लेम जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है इज द प्लेस फॉर यू. फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल द स्पाइस लवर्स. आपके तमाम नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जैसे कि तंदूरी प्लैटर्स, कबाब्स, वेलवेटी करीज, फ्रेश हॉट नान, जो कुछ भी आपका फेवरेट है वो होम स्टाइल पंच के साथ आपको मिलेगा. और ये वो जगह है जहां हर प्लेट को सेलिब्रेट किया जाता है. तो आपको कुछ भी अगर आप जाके खाना चाहते हैं, आप पैक करा के घर लाना चाहते हैं, या आपका कोई मेहमान आ रहे हैं और एकदम से केटरिंग करवानी है, सब कुछ के लिए तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड फॉर द प्लेस फॉर यू. चल रहा है आपके और मेरे दरमियान कवाली स्पेशल और कुछ खूबसूरत कवालियां आपके लिए प्ले कर रहे हैं. एक दो पुरानी कवालियां मैं जरूर लगाऊंगी लेकिन जैसे आपका फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, इफ आई कैन फाइंड एन HD वर्जन और अ 1080 वर्जन ऑफ अ कवाली, ओल्ड कवाली, तो मैं उसको प्ले कर सकती हूँ, लेकिन अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर मजा नहीं आता. सो दिस नेक्स्ट वन इज इन द वॉइस ऑफ द लेजेंडरी, द अनबिलीवेबल नुसरत साहब.

जी हाँ, मिक्स स्पॉट सुन रहे हैं आप. कुछ पुराने गाने और कुछ नए गाने आपके लिए लेकर आती हूँ मिक्स स्पॉट में. आज ये जरा लंबा टाइम मिला है तो मिक्स स्पॉट में ये जो घंटा है ये हमने कवाली स्पेशल रखा है. कुछ पुरानी कवालियां और कुछ नई कवालियां आपके लिए लेकर आई हूँ. उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक कुछ पुराने गाने और कुछ नए गाने, और इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा. चूंकि आप जानते हैं कि आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में आपको मिलता है नया फ्लेवर. यूं मतलब यूं हमारे फ्लेवर्स चेंज होते हैं ताकि आपको महजूज और एंटरटेन रखा जा सके. अच्छा जी, अगली कवाली मेरे पास लाइंड अप है, जरा पुरानी किताबों से निकली है या पुरानी फिल्मों से निकली है, बट ऐसी कवाली है कि इसके अगर आप वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए तो आप कहिएगा कि क्या कहने. और दिस इज ऑफकोर्स वन ऑफ शाहरुख खान फेवरेट कवाली एज वेल, तो आपके लिए प्ले कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, आपको नेटवर्क का इशू है, जैसे मतलब इंश्योरेंस नेटवर्क में कुछ जगहें नहीं होती, तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया है. और वो ये है कि आप जो है उनका ये प्रोग्राम खरीद सकते हैं. दिस इज पैशन हेल्थ डायरेक्ट प्रोग्राम फॉर $85 अ मंथ. और इस मेंबरशिप में आपको क्या मिलेगा? इट इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलोअप्स होंगे, फॉलोअप इन प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट होगी, टेली हेल्थ वेन इट इज नीडेड एंड रिक्वायर्ड, केयर कोऑर्डिनेशन, और साथ ही साथ 20% सेविंग्स होंगी आपको एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर पे. आपको बताती चलूं कि दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, सम रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई, सो एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हैव. टू फाइंड आउट मोर डिटेल्स अबाउट दिस प्रोग्राम एंड सी हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, आप उनको कॉल कीजिए 214-666-6259. नंबर एक बार फिर नोट कीजिए 214-666-6259. या फिर उनकी वेबसाइट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, दैट इज पैशन हेल्थ physicians.com. So aaj hi jaiye, check out kijiye, you might just find, you have found the solution to all your problems. Now this is of course one of those kawalis that are evergreen. This is Ye Ishq Ishq from Barsaat Ki Raat.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
3: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
2: कैसे?
3: पेज 3 ईटरी?
2: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
3: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
2: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
4: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
5: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
6: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
7: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: वेट, इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं ही तो।
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: Passion Health Primary Care, Ensure Home Loans and Omar Khwaja present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. Does your little one love getting creative? This Ganesh Chaturthi, give them a chance to make their very own Ganesha. If your child is between 5 and 12 years old, come join us for a fun-filled clay Ganesha making workshop on September 18th. Limited spots available. Visit Fun Asia's social media pages for registration and more details.
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

मिक्स पॉट सुन रहे हैं आप सुनहरी किरण के साथ, और ये कवाली स्पेशल चल रहा है। 2 बजे तक कवाली स्पेशल करेंगे और उसके बाद मिक्स पॉट में कुछ और मिक्स्ड गाने, पुराने और नए। यही फ्राइडेज का खासा होता है 3 बजे से पहले का। आज आपके साथ मौजूद हूँ 1 बजे से, वैसे आप मुझे सुनते हैं 2:30 to 5 PM। अच्छा जी, सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपको बताऊं कि ऑन द ओकेजन ऑफ दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी एक्सपीरियंस the divine spirit of Braj with the melodious voice of Acharya Gaurav Krishna Goswami ji presenting Chirjeeve Lal Kanhaiya, a soulful bhajan that transports you to the joyous celebration at Nand Bhavan, where the birth of Kanhaiya fills all the Braj with happiness. Presented by Divine Records and Vrajras Productions, this official music video has released today, that is September 4th, 2026. So let us become a part of this divine celebration. I am going to play this beautiful song for you.

Once again, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद. वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल. और अब आ रहे हैं वापस अपनी कवाली स्पेशल की तरफ. और अभी अबाउट 20 मिनट्स और हैं मेरे और आपके व्हेन वी आर गोइंग टू डू कवाली इन द मिक्स पॉट. नई और पुरानी कवालियाँ मिक्स करके आपको प्ले करके सुना रही हूँ. तो अब जिस का वक्त आया है वो एक नई कवाली है जो कि ली गई है फिल्म इंग्लिश बाबू देसी मेम से. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी जब आप ब्रेक पे जाने से पहले जो सुन रहे थे ये इश्क इश्क, इसका एक बड़ा ही फेवरेट जो एक शेर है वो शाहरुख खान साहब को बहुत पसंद है और किसी इंटरव्यू में वो सुना भी रहे थे. तो उसके साथ अगले गाने की तरफ चलते हैं. कहते हैं कि नाजु अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा. ये इश्क इश्क है, कुछ ऐसी ही दास्तान है इश्क की.

आशा भोसले जी की आवाज में सुन रहे थे आप इंग्लिश बाबू देसी मेम से ये गाना, और शाहरुख खान और सोनाली बेंद्रे हमें इस गाने में नजर आई। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताऊं कि सोनू निगम जी आ रहे हैं एब्सोल्युटली लाइव इन कॉन्सर्ट। दिस इज रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव। दिस इज हैपनिंग ऑन September 26th 8:30 शाम एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर। आप इस इवेंट को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते। ऑफकोर्स सोनू निगम आए और उनको जाके ना सुना जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो जल्दी से अपने टिकट्स खरीद लीजिए। टिकट मास्टर पे अवेलेबल हैं टिकट्स, और अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर नोट कर लीजिए 855-360-SHOWS 855-360-SHOWS, दैट इज द नंबर SHOWS। एक बार फिर आपको बताती चलूं, रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव ऑन September 26th 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर इज ऑफकोर्स फन एशियन नेटवर्क। अब सोनू निगम की बात हो रही है तो, और साथ साथ कवालियों की भी बात हो रही है, तो सोनू निगम ने बहुत सारे पुराने गानों का एक नया वर्जन भी गाया। दैट इज हाउ इनिशियली जब हम उनको देखते थे तो वो रफ़ी साहब के बहुत सारे गाने गाते थे और इस तरह के। तो मैं आपके लिए एक उनका कवाली प्ले करने लगी हूँ जो ओरिजिनली गालिबन रफ़ी साहब की ही गाई हुई थी और सोनू निगम ने इसे गाया। दिस इज हमें तो लूट लिया।

सोनू निगम की आवाज में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत कवाली, डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस। और बस अराउंड मेरे ख्याल एक दो कवालियां प्ले करने का टाइम आपके पास, मेरे पास रह गया है, फिर हम मूव करेंगे अपने रेगुलर सॉन्ग्स इन मिक्स पॉट। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एक्चुअली चलिए ये गिव अवे आपको दूंगी ब्रेक के उस पार। फिलहाल ये अगली कवाली आपके लिए प्ले कर रही हूँ, टेकन फ्रॉम द मूवी रॉक स्टार, वन एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल नंबर दिस इज।

0: और ब्रेक पे जाते हुए आपको ये बताऊं जी कि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एंश्योर होम लोन्स एंड उमार ख्वाजा प्रेजेंट्स मेक योर ओन गणेशा विद फाइनेशिया नेटवर्क. जी हाँ, दिस गणेश चतुर्थी चिल्ड्रन एजेस 5 टू 12 कैन क्रिएट देयर ओन क्ले गणेशा एट अ फन फिल्ड वर्कशॉप जो हो रही है सेप्टेम्बर 12th विच इज अ सैटरडे. स्पॉट्स आर लिमिटेड सो आज ही रजिस्टर कीजिए इस वेबसाइट पे जाके. दैट वेबसाइट इज ganesha.funasia.net. एक बार फिर रिपीट कर रही हूं आपके लिए, ganesha.funasia.net. यहां पे रजिस्टर कीजिए अपने बच्चे को 5 to 12 ईयर्स की एज एंड दे विल हैव अ चांस ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन क्ले गणेशा एंड हैव देयर क्रिएटिविटी शाइन. विद दिस वी आर हेडिंग ऑन टू अ शॉर्ट ब्रेक.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, HE FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
4: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को.
6: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
7: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice. Sadia!
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
17: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
15: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
18: तुमसे मिलके दिल का है।
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
15: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
19: डालस की धड़कन 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

जी हाँ, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम और हमें भी आप हाँ बहुत अच्छे लगते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक गिव अवे, अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू, क्योंकि आप हैं इतने ज़बरदस्त लिसनर्स. आपकी फ़ोन कॉल्स आर, वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों की लाइफ लाइन्स होती हैं, और हमारी लाइफ लाइन यहाँ रेडियो पर होती है आपकी फ़ोन कॉल एंड दोज ब्यूटिफुल वर्ड्स दैट यू शेयर विद अस एंड दोज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स दैट यू रिकमेंड. अच्छा जी, फन पिज्ज़ा किचन आपके लिए ये $10 का गिफ्ट कार्ड लेके आया है. एक बात आपको बताती चलूं कि अगर आप जीत गए इसको, तो आपको फ्रिस्को वाली लोकेशन से जाके अपने गिफ्ट कार्ड को कलेक्ट करना होगा. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. अच्छा, एक और मजे की बात आपको फन पिज्जा किचन के बारे में बताती हूं, वो ये कि उन्होंने एक नया ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप शुरू किया है. हर तरह के, वो कहते हैं ना, मतलब मैक्सिकन फियास्टा वहां पर चल रहा है. वेजिटेबल्स, चिकन, सी फूड, हर तरह का आपको पिज्जा वहां पर खाने को मिलेगा इस मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप में. सो इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, फन पिज्जा किचन आइए और एंजॉय कीजिए, और देखिए कि क्या है ये नया ऑब्सेशन इस पिज्जा लाइनअप का. या फिर आप उनकी वेबसाइट चेक आउट कीजिए, funpizzakitchen.com, जहां आपको मजीद पता चलेगा फॉर मोर डिटेल्स, देयर लोकेशंस, देयर टाइमिंग्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. और ये $10 का गिफ्ट कार्ड, मिक्स पॉट चल रहा है, कुछ पुराने गाने और कुछ नए गाने आपके लिए लेके आई हूं. आप मुझे कॉल करके बताइए कि कोई पुराना गाना जो, अच्छा चलिए मैं आपको गाना बताती हूँ और आप मुझे उससे मिलता या उससे जो आपको कोई नया गाना याद आया वो बताइए. गाना है ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए. फिल्म कटी पतंग से गाना आपके लिए लगाने लगी हूँ. आप ये गाना सुनिए और एक्चुअली हाँ चलिए आप ये गाना सुनिए और फिर मुझे बताइए कि इस गाने को सुन के आपको कौन सा गाना याद आ रहा है, नया वाला, और फिर वो मैं आपके लिए ज़रूर प्ले करूँगी. 972-235-5555 इज़ नंबर टू द स्टूडियो.

0: मस्तानी।
1: जी हाँ, ये शाम मस्तानी से आपको क्या नया गाना याद आया, यही सवाल था, क्योंकि मिक्स पॉट चल रहा है, कुछ पुराने और कुछ नए गाने आपके लिए। और जी, आप सबकी फोन कॉल्स का और पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति, जलपा, स्वप्निल, कामिनी और हमारी जो, जैसे आप जानते हैं कि मैं डाल देती हूँ जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल आती है एक मैथ के फॉर्मूले में और लकी नंबर निकलता है, और हमारे जो लकी कॉलर आज के जीते हैं वो हैं जी स्वप्निल महल्ले। स्वप्निल, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये फन पिज्जा किचन का $10 का गिफ्ट कार्ड। आपको जाना होगा फ्रिस्को लोकेशन पे टू कलेक्ट इट, बट गिव अस 2 days, आपका नाम और नंबर हम वहां पहुंचा दें, देन यू विल हैव 7 days टू गो एंड कलेक्ट योर गिफ्ट कार्ड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मेरे आपकी पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करती है और फन एजिया इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है। दो जो मेजर जवाब मिले मुझे और डेफिनेटली वही दोनों गाने मैंने भी आइडेंटिफाई किए हुए थे, एंड दैट वाज वन, आज ये शाम मस्तानी से, शाम भी कोई, आयशा फिल्म का, और दूसरा मधोश, दिल की धड़कन मधोश किए जाए से। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ शाम भी कोई फ्रॉम द मूवी आयशा।

जी हाँ, और इसी के साथ मुझे ये ख्याल आया कि गिव अवे आपके लिए लेकर आई, तो एक साथ ही साथ पुराना गाना चला दिया था, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं का जो गाना मैंने आपके लिए प्ले किया कि बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, उससे जो नया गाना मुझे याद आया वो तो मैंने आपके लिए प्ले ही नहीं किया क्योंकि मैं आपके लिए गिव अवे ले आई थी। तो अब बड़े अच्छे लगते हैं से नया गाना मुझे कौन सा याद आया वो प्ले करने लगी हूँ आपके लिए, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में।

मिक्स स्पॉट सुन रहे हैं आप, कुछ पुराने और कुछ नए गाने, राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. 3 बजे तक मिक्स स्पॉट और 3 बजे से लेकर 4:30 तक किड्स जंक्शन, बच्चों के फेवरेट गाने यहाँ प्ले किए जाएंगे. नेक्स्ट गाना जो मुझे याद आ रहा है, एक पुराना गाना, बहुत ही प्यारा, जिया बहादुरी और संजीव कुमार पे पिक्चराइज, दिस इज बाहों में चले आओ. और बाहों में चले आओ प्ले करके मैं आपको ब्रेक की तरफ लेके जाऊंगी, और ब्रेक से वापस आकर आपको नया वर्जन सुनाऊंगी कि बाहों में चले आओ से मुझे कौन सा नया गाना याद आया, समथिंग रिलेटेड टू बाहों एज वेल.

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
2: And now, at a bigger location, just 3 doors down, with limited reservation available.
3: Dad, property papers kahan hai?
6: Laptop mein.
3: Investment?
6: Google Drive.
3: Insurance? Passwords?
6: Beta, don't worry, mujhe sab pata hai.
3: Dad, wahi to problem hai, sirf aapko pata hai.
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
7: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
14: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
15: Dallas ki Dhadkan, 104.9 FM. Funisia Radio.

मिक्स स्पॉट सुन रहे हैं आप राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. 3 बजे तक कुछ पुराने और उनसे उनके लफ्जों से जुड़े कुछ नए गाने आपके लिए लेकर आती हूं. जो उस गाने को सुन के मुझे नया गाना याद आता है वो आपके लिए प्ले किया जाता है. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, फॉर कॉलिंग एंड फॉर रिकमेंडिंग सच ब्यूटिफुल सॉन्ग्स. योर कॉल्स रियली मैटर. आप टाइम निकालते हैं, फोन करते हैं, अपनी इनपुट देते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा जी, अगला गाना आपके लिए लाइंड अप है और वो लिया गया है फिल्म कुर्बानी से. वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. वो कहते हैं ना, कुछ रोमांटिक मेलोडीज होती हैं जिनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको वाकई रोमांटिक फील कराती हैं. सो दिस इज वन ऑफ देम. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जरा फाइनेंसिस का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है रोमांस के साथ. तो दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय AG फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट गोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द US. ऑफर करते हैं जी आपको ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग और उसके साथ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी. चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप बिजनेस ओनर हैं, चाहे आपका स्टार्टअप है, नो मैटर वेयर यू स्टैंड, AG फिनटेक्स कैन बिकम योर पार्टनर इन यू नो गाइडिंग यू एंड टेलिंग यू व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद योर फाइनेंसेस. तो AG फिनटेक्स को कॉन्टैक्ट कीजिए बाय कॉलिंग एट 4699429888. 4699429888 उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए agfintax.com. दैट इज agfintax.com. एंड दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे.

कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक, मनहर उदास, आनंद कुमार और कंचन की आवाजें, फिल्म थी कुर्बानी, लिरिक्स थे इंदीवर साहब के, और इस फिल्म कुर्बानी फिल्म की जो म्यूजिक एल्बम थी, ये 1980s का जमाना था, 80 की में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड इट बिकेम द बेस्ट सेलिंग साउंड ट्रैक इन इंडिया इन 1980, जबकि इट वाज द सिक्स्थ बेस्ट सेलिंग साउंड ट्रैक इन द इंटायर 80s का डेकेड. सो ये पावर थी जी कुर्बानी फिल्म और कुर्बानी फिल्म के गानों की. मिक्स पॉट में कुछ पुराने और कुछ नए गाने आपके लिए प्ले करते हैं. पुराने गाने में से कोई एक वर्ड मैं पिक करती हूँ और उससे मुझे ख्याल आता है जिस नए गाने का, उसको हम प्ले करते हैं. तो चाहत चाहा, इससे अगला नया गाना आपके लिए प्ले हो रहा है फ्रॉम द मूवी इम्तिहान. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ आपके हेल्थ रिलेटेड, मतलब आपकी सेहत के हवाले से. और वो ये कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर आपको ये प्रॉब्लम होता है कि कोई आपकी नेटवर्क का इशू होता है, यू नो, इंश्योरेंस नेटवर्क का, तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, सबसे पहले तो दे आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू एंड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. और अब वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक अफोर्डेबल प्राइमरी केयर प्रोग्राम विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट, विच इज ओनली फॉर $85 अ मंथ. अब इस मेंबरशिप को अगर आप लीजिएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा? प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप इन प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, साथ ही साथ टेली हेल्थ व्हेन रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी, केयर कोऑर्डिनेशन, और उसके साथ 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एज वेल एज डायग्नोस्टिक सर्विसेज. तो अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम नहीं है जी, लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई होती हैं, तो ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को कॉल करने में कोई हर्ज नहीं है. गिव देम अ कॉल, आस्क देम, डिस्कस, आस्क योर क्वेश्चंस एंड गेट योर सेल्फ क्लियर आंसर्स ऑफ व्हाट यू वांट. वो नंबर है 214-666-6259. नंबर, या फिर आप passionhealthphysicians.com पे लॉग ऑन कर सकते हैं, passionhealthphysicians.com. नाउ दिस इज चाह तो बहुत ना चाहे तुम्हें, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं.

और अगर आप क्रेव कर रहे हैं कुछ ऐसे फ्लेवर्स को जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, तो HOCO, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड्स, इज नाउ ओपन इन फ्रिस्को. पहुंच गए हैं जी फ्रिस्को टेक्सास में. एंजॉय कीजिए उनके फेवरेट्स जैसे कि चना पूरी, सैंडविचेस, डिलिशियस करीज और उनकी लेजेंडरी HOCO कोल्ड कोको. दे आर लोकेटेड एट 2693 प्रेस्टन रोड, स्वीट 1000, फ्रिस्को. और एक्सप्लोर कीजिए उनके मेन्यू को एट HOCO.US टू फाइंड आउट मोर. दैट वेबसाइट इज HOCCO, HOCO.US. तो उनका मंत्र बड़ा सिंपल है जी, कम हंग्री एंड Leave with the taste of India. और एक स्पेशल ऑफर लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए. सबसे पहले विद अ वैलिड स्टूडेंट आईडी गाइस, यू कैन गेट 20% स्टूडेंट डिस्काउंट. एंड फॉर ऑल द एम्प्लॉयज एज वेल, फॉर योर लंच पैक्स विद अ वैलिड एम्प्लॉई आईडी, 20% डिस्काउंट फॉर एम्प्लॉयज ऑन लंच पैक्स, अवेलेबल मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स. तो ये जबरदस्त दो आपके लिए स्पेशल्स आए हैं जी. जरूर विजिट कीजिए HOCO.US को, चेक आउट देयर मेन्यू एंड visit them at 2693 Preston Road, Suite 1000, Frisco. अच्छा, मुझे डिस्को डांसर फिल्म याद आ रहा. कभी कभी बैठे बैठे कोई चीज याद आ जाती है. पुराने गानों से मुझे डिस्को डांसर फिल्म याद आई जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने कमाल का किरदार अदा किया था. दिस इज देयर आइकॉनिक नंबर जिमी. आजा

जी हाँ, इसके बाद धुन ना सिर्फ उन्होंने सुनाई बल्कि ऐसा डांस किया कि बन गए डिस्को डांसर। और इस पुराने गाने से मुझे गजर जिमी जिमी आजा से मुझे आजा नचले का ये गाना याद आया। सो वो ही प्ले करके इस सेगमेंट को आपके लिए क्लोज कर रही हूँ। 3 बजे से ऑनवर्ड्स किड्स जंक्शन शुरू हो गया है। बच्चा पार्टी, गेट रेडी टू गिव मी अ कॉल। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। बिफोर आई पुट ऑन द आजा नचले सॉन्ग एंड एंड द सेगमेंट, आई हैव टू टेल यू, अगर आप मूव कर रहे हैं तो मूव करने के लिए आपको अब परेशानी की जरूरत नहीं। यू नीड टू शिप योर डॉक्यूमेंट्स, या आपने अपने बॉक्सेस मूव करने हैं, या आपने अपना पूरा घर मूव करना है, या खाली गाड़ी मूव करनी है, जो भी आपकी मूविंग रिक्वायरमेंट्स हैं, SFL वर्ल्ड वाइड विल हेल्प यू। दे विल गेट यू कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन US, बल्कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो SFL वर्ल्ड वाइड पे लॉग ऑन कीजिए टू चेक आउट मोर अबाउट ऑल द सर्विसेज दैट दे आर ऑफरिंग, और यू कैन गिव देम अ कॉल 1-800-691-2335 1-800-691-2335.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
2: How may I help you?
3: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
2: Fikar not. We have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
4: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
5: लिया.
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
5: नहीं आया.
4: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
6: Visit www.senadainc.com today.
7: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
8: Kitne aadmi the?
9: Sarkar pura ka pura Dallas Phoenicia sunta hai.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: एक और लड्डू ले लो।
3: थोड़ी और बिरयानी।
2: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
4: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
5: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
8: ओचो
9: होको
8: ओचो
9: होको
8: ओचो
9: इट्स होको।
0: अरे बस भी करो यार।
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
0: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है। एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
10: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
11: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
12: हाँ।
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ।
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ।
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
13: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
14: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
15: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
17: Sadia!
18: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
3: Don't touch that dial. Keep listening.

All right, guys, ब्रेक पे जाते हुए आपके लिए गिव अवे आया था फन पिज्जा किचन का $10 का गिफ्ट कार्ड और थैंक यू फॉर ऑल योर कॉल्स. और जो हमारा विनर पिज्जा है वो है चीज पिज्जा. चीज पिज्जा इज व्हाट एवरी चाइल्ड लाइक्स. थैंक यू. एंड द विनर टुडे इज हमारे अद्विक. और अद्विक कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये $10 का गिफ्ट कार्ड. यू विल हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट इन टू डेज. आफ्टर टू डेज, गिव अस टू डेज टू गिव योर नेम एंड योर नंबर टू द रेस्टोरेंट एंड आफ्टर टू डेज यू कैन गो. यू विल हैव 7 days टू गो एंड पिक योर $10 गिफ्ट कार्ड. एंड टू ऑल ऑफ यू गाइज हु पार्टिसिपेटेड, थैंक यू सो मच. आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ गिव अवेज फॉर यू. यू कैन पार्टिसिपेट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल म्यूजिकल एज वेल एज अ गिव अवे जर्नी. एंड आई एम गोना प्ले दिस नेक्स्ट नंबर ऑन रीटाज रिक्वेस्ट. लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम सुनने वालों को, स्पेशली बच्चों को हु आर बिटवीन द एजेस ऑफ 5 to 12, दिस इज स्पेशली गोइंग आउट टू यू गाइज. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एनश्योर होम लोन एंड उमर ख्वाजा प्रेजेंट्स मेक योर ओन गणेशा विद फनेशिया नेटवर्क. जी हाँ, इस गणेश चतुर्थी चिल्ड्रन अंडर इन द एजेस ऑफ 5 to 12 आपको मौका मिल रहा है टू क्रिएट योर ओन क्ले गणेशा एट द फन फिल्ड वर्कशॉप दैट वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू ऑन सैटरडे सेप्टेम्बर द 12th. स्पॉट्स लिमिटेड है, यू विल हैव टू रजिस्टर. सो टेल योर मॉम एंड डैड दैट यू वांट टू गो एंड मेक दैट क्ले गणेशा एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एट दिस website ganesha.funasia.net. once again, that website is ganesha.funasia.net. so guys, this is your chance to show your little creativity, show the artist in you and make your own clay ganesha with Funasia Network. That is happening on Saturday, September the 12th. Go and sign up for that workshop.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
6: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
6: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
6: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
6: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
10: इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं ही तो।
12: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
13: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
14: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
15: We need to talk.
16: अब क्या हुआ?
15: Nothing, it's not you.
16: Oh no.
15: It's the distance.
16: Distance? We live 10 minutes apart.
15: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
17: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
18: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
19: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं,
11: हमारी यादें हैं और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 214-869-2668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।
19: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

0: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
1: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
2: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
3: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Term restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
4: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
5: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
6: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डेलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभाल लेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
8: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
10: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
10: तुमसे मिलके दिल का है।
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
11: कितने आदमी थे?
12: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

And with that, it is time now to give you the weather update. What an absolutely beautiful chiller party we had today. Lots of fun with Agniv. You can be a part of this chiller party as well on our Instagram post. Go in the comment box, write your name, your age, your grade, and someone from our team will get back to you. So what is the weather looking like? Friday, September 4th, 4:48 p.m. in the studio. And right now, city of Makini Meheji, 98 degrees. However, it feels like 106. एक बार फिर दोबारा से वही गर्मी की लहर आ चुकी है. कल थोड़ी सी राहत का मौसम था, लेकिन आज दोबारा से वही सनी हाइज इन दी मिड 90s टू 100s, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर, लोज इन दी मिड 70s. हीट इंडेक्स वैल्यू अप टू 106. आज का पॉलन काउंट है 7.9, विच इज मीडियम हाई. रैगवीड, एल्म एंड ग्रास इज व्हाट इज बॉदरिंग वेयर पॉलन इज कंसर्न्ड. इफ यू गेट वरिड विद दीज रैगवीड, एल्म एंड ग्रास, तो प्लीज अपनी रेमेडीज ले लीजिए. यूवी इंडेक्स इज 9 to 10, विच इज वेरी हाई. इफ इट्स ऑफकोर्स वीकेंड एंड दैट टू लॉन्ग वीकेंड. इफ यू आर प्लानिंग टू बी आउटसाइड गोइंग समवेयर डूइंग समथिंग, कीप योर सनस्क्रीन हैंडी एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हाइड्रेशन आपकी पूरी ना हो तो फिर सर का दर्द जो है, सबसे पहली मुझे तो पता लग जाता है कि आई एम डिहाइड्रेटेड, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है. सो कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड जी. सनराइज आज का हुआ 7:02 पे सुबह, जबकि आज का सनसेट होगा 7:47 PM. बट दैट्स वेरी मच ऑल दैट आई हैड फॉर यू वेयर योर वेदर फोरकास्ट इज कंसर्न्ड.

और इसी के साथ करेंसी अपडेट आपको देते चलें. यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो इस वक्त जी अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.86 पे. ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.73. इंडियन रुपी 94.46 पे स्टैंड कर रहा है. कैनेडियन डॉलर 1.38 जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.59 पाकिस्तानी रुपीज ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. नेपालीज रुपी 151.20 पे स्टैंड कर रहा है जबकि बांग्लादेशी टका 122.89 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर.

0: और इसी के साथ वक्त आ चला है आपको गोल्ड प्राइस अपडेट देने का कि सोने का आज क्या भाव है जी. सो अकॉर्डिंग टू goldprice.org राइट नाउ दैट इज फ्राइडे सितंबर द 4th 4:55 अराउंड 56 पीएम इन द स्टूडियो गोल्ड प्राइस पर आउंस है $4,430.03 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $142.43. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $2.03 की कमी हुई जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $63.13 की कमी देखने को मिली. But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on your afternoon drive time with the Sunehri Kiran. अब सोने की बात हो रही है तो इसी गाने के साथ आगे बढ़ते
1: सोना

Hey,

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart.
1: थैंक गॉड इट्स फ्राइडे दोस्तों, आ चुकी हूँ मैं आपकी होस्ट नवनीता 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अपना शो लेके ऑन दिस अमेजिंग ब्यूटिफुल लवली फ्राइडे. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद ट्यून इन करने के लिए, अभी मेरे साथ जुड़ने के लिए. और बिग शाउट आउट टू किरण फॉर सच एन अमेजिंग शो. एज ऑलवेज खास खास साथ होता है उनका और आपका 3 से 5 तक, और 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. ये शाम बस बहुत कुछ है लाइंड अप आपके लिए, सुनते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, दिल से

सुंदर ब्यूटीफुल लवली ब्रांड न्यू गाना है दोस्तों, वो वाला जो अभी अभी आप सुन रहे थे आंखों में तेरी। ये सॉन्ग कभी कभी कुछ गाने ओनली म्यूजिक वीडियो सॉन्ग्स होते हैं, रोगेश रावत फीचरिंग आकांक्षा चौधरी, दिस वन अ लव सॉन्ग, अ पहाड़ी सॉन्ग, दैट्स व्हाट इट इज़, अ वेरी ब्यूटीफुल वन। दोस्तों किसी ने कहा है और बहुत खूब कहा है, और दिल से दिल की बात दिल तक पहुँचे ना तो लगती है ठाएं, और ये बात एक्चुअली आज की बात है जो ठाएं ठाएं हैं। पहले लोग रूठते थे तो मनाने आते थे, अब लोग रूठ कर सीधे किसी और से बात करने लगते हैं। सोचने की बात है, डोंट यू थिंक सो? डोंट पीपल केयर, और फिर इश्यूज ऐसे बन जाते हैं कि यार आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल एंड आई विल जस्ट मूव अवे। ये जब लोग मूव अवे कर जाते हैं ना, वो मुझे नहीं समझ आता। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी, ये वाला जो फंडा है वो कहाँ चला जा रहा है? दिन पर दिन वो हल्का ही होता जा रहा है। रूठा है कोई, अपसेट है, दैट डजेंट मीन दैट इज नेगेटिविटी, दैट इज ही लव्स और शी लव्स यू सो मच कि कुछ आशाएं हैं, कुछ यू नो एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आपकी दोस्ती से। बट लोग बस मूव ऑन कर जाते हैं, बोलते रूठा है तो भाड़ में जाए, मेरे पास और भी दोस्त हैं। लेकिन फिर वो दोस्त नहीं होते, बस आप मूव ऑन करते रहते एक बंदे से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक। लेकिन वो जो अच्छा दोस्त आपका हमेशा से रहा है, उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके उस रूठे दोस्त को मनाने में, इट इज़ नॉट नेगेटिविटी फॉर श्योर। सो अगर आपको ये बात सही लगी है कि लोग आजकल ऐसा डेफिनेटली कर रहे हैं कि रूठने को मनाने से बेटर सोचते हैं किसी और से बात कर लिया जाए, इज इट करेक्ट और नॉट? 9722355555 स्टूडियो का नंबर, फोन उठाइए, नंबर दबाइए, मुझे बताइए आपकी सोच इस पर क्या है। तब तक मैं प्ले करती हूँ आपके लिए एक आस्था गिल का गाना, दिस वन अ ब्रांड न्यू सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ आस्था गिल।

0: नाइस राइट, एक छोटा सा ब्रेक की तरफ हम आगे बढ़े। आदिल साहब ने कॉल किया और उन्होंने बोला, नवनीता आपने कितनी अच्छी बात की कि यस पीपल डू नॉट स्पेंड टाइम रूठों को मनाने के लिए और मूव ऑन हो जाते हैं। मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, यार किसी के दिल को समझो, किसी की बात को समझो, रूठने वाले को समझो, बजाय कि उसके शब्दों पर नाराज हो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम एक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटीज एंड अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। लर्न हाउ अ पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू परस्यू your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchase. From silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
4: जिंदगी एक रंगमंच है
5: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
6: ये तारा वो तारा हर तारा।
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
8: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
11: लैपटॉप में।
10: इन्वेस्टमेंट,
11: गूगल ड्राइव,
10: इंश्योरेंस, पासवर्ड्स?
11: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
10: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
12: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
13: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
12: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free

0: and give your family clarity and control.
1: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
3: अरे यार घर मिल गया
4: घर तो देख रहा हूँ लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर वो सिर्फ घर नहीं दिखाते हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी
4: सीरियसली अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी
1: बिल्कुल विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम
5: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned in to Fun Asia Radio.

0: है ना, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. एब्सोल्युटली कैसा भी दिन गया हो, फ्राइडे आते ही दिन अच्छा लगने लगता है. एंड आज का तो और भी, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, मंडे तक आपकी छुट्टी है. सो येस, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू आर सो थैंकफुल. कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं आउट ऑफ डैलस, इतनी गर्मी है. सो मैं भी आउट ऑफ डैलस जा रही हूँ कल सैटरडे संडे मंडे. सो कूल, इट इज़ गुड टाइम टू गेट आउट एंड गुड टाइम टू बी विद फैमिली, इन्जॉय. एंड फ्राइडे से ही आपकी छुट्टी शुरू हो गई है. सो आई हैव ड्रॉप्ड इन द वाइब ऑफ फ्राइडे. व्हाट से, इज़न्ट इट ट्रू? टोटली. 104.9 FM फनीजा रेडियो सुन रहे हैं. और वैसे हम बात कर रहे थे एक बहुत ही खूबसूरत बात पर, कि पहले लोग रूठते थे तो मनाने आते थे, अब लोग रूठ कर सीधे किसी और से बात करने लगते हैं. सही है, नॉट सही, ओके, नॉट ओके, एब्सोल्युटली नॉट ओके. अभी अभी जैन साहब ने कॉल किया, उन्होंने कहा यार पता है बात होती है 20%, 80% इज़ हाउ वी रिएक्ट टू द सिचुएशन. छोटे छोटे बातें मोल से माउंटेन बना देते हैं. ऐसा ही होता है, राई का पहाड़ जैसे कहते हैं. और बोलते ये है हमारा जैन साहब कि हमारे डैलस में नहीं, आज के ज़माने में ऐसा सच है कि हम जस्ट किडिंग बोल के बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं और फिर कहते हैं जस्ट किडिंग यार, दिल तो दिखा दिया ना, हंसी आई नहीं किडिंग वाली.
1: जिस

धड़क है ये गाना, प्रीत रे धड़क टू से. अमेजिंग सॉन्ग सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो. पता है आज ऐसा हुआ कि झिल्लू राम के बॉस ने एक बहुत ग्रुप में एक जोक सुना दिया और सारे के सारे लोग हंसने लग गए, जोर जोर से हंसने लग गए, बुरी तरह हंसने लग गए. झिल्लू राम नहीं हंसे. तो बॉस ने बोला, झिल्लू राम व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आपको जोक नहीं समझ में आया कि हंसी नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है बताइए. तो झिल्लू राम ने कहा, सर आज ही मुझे दूसरे कंपनी में जॉब मिल गई है. आपको भी झिल्लू राम के जोक पर नहीं समझ आ रहा, आप तो आप ना हंसे.

ये आवण जावण के सिलसिले में कभी ऐसा हो जाए, आप एक्सीडेंट में फंस जाए या स्लिप एंड फॉल की वजह से गिर जाए, तो परेशान नहीं होने का, क्योंकि हमारे साथ हैं उमर ख्वाजा जो आपकी मदद कर सकते हैं टू हेल्प यू विद यू नो गेटिंग यू द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिज़र्व. और होता ऐसे है लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा, अगर आपकी परेशानी है तो दे हेल्प यू फाइट द केस एंड दे डू नॉट चार्ज यू एनीथिंग अनलेस दे विन. फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 4693005046 या फिर विज़िट कीजिए attorneyomar.com पे. एंड दैट इज़ हाउ दे हेल्प यू ऑल द टाइम. सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो मेरे साथ. दोस्तों पता है बहुत कुछ खबरें हैं, तो कुछ खबरें हो जाए आज की वेरी इंपॉर्टेंट. बॉलीवुड बज में ये बजिंग न्यूज़ आई है कि जो मिर्ज़ापुर फिल्म थी ना, उसकी रिलीज़ हुई है और वो पहले OTT में आने वाली थी, बट द मूवी हैज़ रिलीज इन थिएटर्स टुडे September 4th को विद पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु एंड श्वेता त्रिपाठी. और ये मिर्ज़ापुर का यूनिवर्स बन चुका है, पहले मिर्ज़ापुर बन गई थी, अब मिर्ज़ापुर वापस से आई है. रवि किशन भी है उसमें. अर्ली ऑडियंसेस की जो यू नो बाहर आ रही है चैटर, इट इज़ अबाउट दैट दे आर वेरी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट एंड दिस एंटर द डे विद वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांस सेल्स. और बहुत अच्छी वाली ओपनिंग हुई है मिर्ज़ापुर के. मिर्ज़ापुर हैज़ बिन अ वेरी गुड मूवी और इसमें तो पंकज त्रिपाठी है, तो माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की तो बात ही मत कीजिए. एक से बढ़कर एक फिल्में बनाए हैं इन्होंने. इमरान हाशमी की आवारापन 2 जो हैं, सरप्राइजिंगली दिस मूवी क्रॉस द फाइनल प्री सेल ग्रॉस कलेक्शन ऑफ इमरान हाशमीज आवारापन 2 विच हैड द बेनिफिट ऑफ अ सीक्वल एज वेल. तो ये जो फिल्म है गॉट अ लॉट ऑफ ओपनिंग्स, शो केसिंग अ लॉट ऑन द थिएटर्स एंड दिस वॉज वेरी इम्प्रेसिव कंसिडरिंग द नो बिग स्टार फेसेस इन दिस फिल्म, बट ऑल दीज मेथोडिक एक्टर्स आर सुपर्ब. जो लोग इतना ज़ोर पसंद करने लगे हैं सारे पंकज त्रिपाठी जी फेम के एक्टर्स को, कि वो भी आज के ज़माने में कैन ड्राइव अ लॉट ऑफ attention to any film that has released. Great, है ना? अच्छा लगता है जब acting की वजह से लोग पहचाने जा रहे हैं. What say?

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: Hey, tumne kabhi insurance liya?
5: Liya.
4: Kabhi policy samajh bhi aaya?
5: Nahi aaya.
4: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
6: Visit www.sanadainc.com today.
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
1: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
6: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
10: तुमसे मिलके दिल का है.
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
11: स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनीजा रेडियो पर. थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद ट्यून इन करने के लिए, मेरे साथ बनने के लिए ऑन दिस अमेजिंग रेडियो स्टेशन जो सुबह शाम दिन रात रोज़ाना हर हफ्ते आता है, हंसते हंसते बस जाता है आपकी एक मुस्कान. और वो मुस्कान इज़ अ मिलियन डॉलर मुस्कान. तो मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए हम हर किसी को ऑन फनीजा रेडियो. चाहे आप इस रेडियो स्टेशन पे ट्यून्ड इन हैं या फिर हमारे तेलुगु रेडियो स्टेशन रेडियो संगम में ट्यून्ड इन हैं या फिर तमिल रेडियो स्टेशन वणक्कम और हमारा पंजाबी अपना पंजाब या फिर रेडियो कारवा, दैट इज़ अनदर ब्यूटिफुल अमेजिंग रेडियो स्टेशन विथ हिंदी सॉन्ग्स फॉर यू. वेलकम.

कॉकटेल टू का ये खास खास गाना आई न जग से लार्ज दैट वन फॉर यू ऑन दिस अमेजिंग फ्राइडे इवनिंग 5 से 8 स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट विद योर होस्ट नवनीता. दोस्तों पता है There's a new star kid on the block. जी हाँ, no nepotism, but this is the star kid. अरबाज खान और मलाइका अरोरा के सुपुत्र अरहान खान is all set to make his Bollywood debut with an action-packed love story. जी हाँ, ये बड़ी खबर नहीं है, उससे बड़ी खबर ये है, reports आई है आज ही कि सलमान खान will make a cameo in his nephew अरहान खान's debut project. भांजे की या भतीजे की फर्स्ट फिल्म में सल्लू भाई तो आना बनता है ना यार. अरहान इज अरबाज खान मलाइका अरोरा सन आफ्टर ऑल. मामू को मामू है तो फिर ये तो भतीजा नहीं, भांजा ही हुआ. बोल भांजे. मामू को सलमान खान तो डेब्यू में थोड़ा सा भाईजान का तड़का तो वहाँ बनता है टोटली. और ये तड़के के साथ ये लॉन्च होगा ये स्टार किड. बट सल्लू भाई दैट इज सुपर. बॉलीवुड बज की ये जो बजिंग साउंड है मे बी बिकम्स अ बिग डील फॉर द स्टार किड. मानना पड़ेगा. तो लेके प्रभु का नाम ये फिल्म हो जाए. सल्लू का नाम ले लो.

0: यार म्यूजिक व्यूजिक तो ठीक है, प्रभु के नाम से एक बात याद आई, नीम करोली बाबा को तो आप जानते होंगे। एक्चुअली नीम करोली बाबे बिकेम, ही वॉज बिग, बट उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ आफ्टर स्टीव जॉब्स स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, मार्क जुकरबर्ग, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली। एक्चुअली नीम करोली बाबा का फोटो देखने के बाद जूलिया रॉबर्ट्स ऑल्सो वॉज वेरी ड्रॉन टू हिंदुइज्म। लॉट ऑफ स्टोरीज अराउंड नीम करोली बाबा, बट मेरे को क्या बात याद आई वॉज दैट यू नो हनुमान अंश वॉज दिस फिल्म That is made on नीम करोली बाबा। लास्ट वीक ही मैं पढ़ रही थी कि वो बहुत नाम करनी चाहिए थी ये फिल्म, लेकिन इट इज़ अ फ्लॉप, बहुत ज़्यादा नाम नहीं करी। बट सडनली इट्स टर्न्स आउट कि अनएक्सपेक्टेड वर्थ ऑफ माउथ की वजह से सक्सेस इज राइजिंग। रिपोर्ट ये बता रही है इस हफ्ते की 70 क्रोज इंडिया में कमा चुकी है आफ्टर ड्रामेटिक राइज इन स्क्रीमिंग, डिस्पाइट दैट द मूवी हैड इनिशियली नॉट फाउंड एनी सपोर्ट। It is now scheduled for an overseas, like यहाँ पर आ जाएगी theatrical release on September 11, and a sequel इस फिल्म की बनेगी वो भी confirmed हो गई है। Wow man, sometimes Bollywood reminds us कि audience ना अभी भी ultimate superstar ही हैं। You can have no huge star, no massive opening, limited show, but फिर भी अगर connect किया, दिल से दिल की बात दिल तक पहुँची और लगी ठाएं, तब उस स्टोरी को कोई नहीं रोक सकता। वो स्टोरी की डेस्टिनेशन एब्सोल्युटली बदल सकती है। व्हाट से नीम करोली बाबा, इसी वजह से कहते हैं किसी को छोटा नहीं समझो, कुछ भी हो सकता है। इसको ज्ञान बाबा देवी कुछ भी समझ ले,
1: कुछ बोलो यार, छोड़ो यार।
0: अब इस ये भी बोलने को कह रहे हैं हम गाने सुन ले, बोलने के अलावा कुछ कर लेते हैं। डन, देयर यू गो।

0: ये आंखों से तूने का 2.0 वर्जन है भाई, तेरा स्टार है फिल्म से. और पता है वैसे 2.0 है एवरी टाइम, द ओरिजिनल इज ओरिजिनल मैन. एंड वो ओरिजिनल स्टार कुमार शानू, जिनकी आवाज़ आप सुन रहे थे अलका याग्निक के साथ, ही इज कमिंग टू टाउन. Dallas, get ready for a night filled with timeless melodies, जो unforgettable होने वाली है क्योंकि romantic होने वाली हो और वो pure 90s का nostalgia लेकर आने वाली है. और ये आवाज़ most iconic रही है, दिलों में बसी है और हमने बार बार गुनगुनाया है, गुनगुना गुनगुना के बस गया है हमारे शरीर में. और ये अगर live performance हो तो क्या बात, क्या बात, क्या बात. Live in Plano. एक्सपीरियंस कीजिए ये शानू का कॉन्सर्ट अनफॉरगेटेबल 90s के साथ सितंबर 11th को एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. ब्रांड न्यू थिएटर फॉर ऑल ऑफ अस. कॉन्सर्ट के लिए सिंग अलॉन्ग टू सॉन्ग्स यू ग्रू अप विद एंड एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ एन ईरा दैट स्टिल लिव्स इन आवर हार्ट. दिल धक धक करने लगा. बट आपको ये कहूँगी कि ये जो जगह है इसमें बहुत लिमिटेड सीटिंग है, ब्रांड न्यू है, छोटा है और सीट्स अवेलेबल राइट नाउ. आप कुमार शानू के फ़ैन हैं तो जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए. फ्री पार्किंग है और एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट के भी ऑप्शंस हैं. टिकट्स आपको मिल जाएंगे eventbrite.com पर, sulekhatickets.com पर, या फिर फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 2148692668 और अधिक जानकारी चाहिए तो. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group. Media partner, of course, it is Wow Us. Say wow! ये वाव तो बोल दिया मैंने, लेकिन ये वाव और आधा ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये वाव की बारी आएगी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस तरफ द वाव सॉन्ग फॉर यू. कहीं जाएगा मत, यही रहिए.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, a division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahun.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
10: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
11: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
10: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
11: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
9: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव अ 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
14: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ। विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
15: Hoko.
16: It's Hoko.
17: अरे बस भी करो यार।
16: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
17: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है। एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
10: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
18: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
19: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है।
20: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
10: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल। 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट। सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
21: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
10: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
22: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
8: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s। सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। गाइए, झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप।
0: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन एजा रेडियो पर। वाओ, आपको बोलना होगा अगर दिल से दिल की बात आपको दिल तक लगे तो। किसी ने कहा है, गम बहुत है मगर खुलासा कौन करे। गम बहुत है मगर खुलासा कौन करे, मुस्करा देता हूँ यूं ही, अब तमाशा कौन करे। वाओ,

वाओ वाली फीलिंग है, जवानी तो इश्क होना है. वरुण धवन की जो फिल्म थी दैट इज व्हाट दैट सॉन्ग वाज फ्रॉम 104.9 FM फनीजा रेडियो सुन रहे हैं. दोस्तों पता है आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का नाम तो आपने सुना ही होगा. आपके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है तो क्या पैशन हेल्थ है ना, ये नेटवर्क आपके लिए ही है. गेट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट. सिर्फ $85 पर मंथ में आपको हर कुछ मिल जाएगा, इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और बहुत कुछ जो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए लेके आते हैं और आपके साथ वक्त बिताते हैं और समझते हैं आपकी परेशानी. फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए या फिर कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए 214-666-6259 पर या विज़िट कीजिए passionhealthphysicians.com. एंड यू नो दिस प्रोग्राम इज़ नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, इट इज़ एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं इनमें, लेकिन आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है. आपके पास इंश्योरेंस नहीं है फिर भी आप यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं.

वैसे सच पूछिए तो वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल मिनट जब हमारी सांसें चल रही है थैंक गॉड फॉर एवरी पर्सन इन आर लाइफ थैंक गॉड फॉर सो मेनी थिंग्स बट येस थैंक गॉड इट्स फ्राइडे कहने में ज़्यादा मज़ा आता है व्हेन द वीकेंड इज लॉन्ग और आज तो बहुत ही खास खास दिन भी है एक फिल्मी गाने से शुरू करती हूँ फिर आई विल डाइव स्ट्रेट इन टू दिस ब्यूटिफुल इवनिंग एंड डे Which we are celebrating right now.

Ram and Krishna put in a very, very different perspective here. But yes, very, very happy Krishna Janmashtami to all of you. Ye tohar na aa chuka hai aur Krishna ki baat ho rahi hai. To sirf bhakti ki baat nahi hoti, zindagi jeene ki kala ki baat hoti hai. A lot of good words have come out from him. Kabhi wo natkhat kanhaiya hai, makhan churate hue, Yashoda maiya ko satate hue. Kabhi wo Radha ke Krishna hai, jahan prem ko paane से ज़्यादा प्रेम को महसूस करना ज़रूरी है और कभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी जो हमें ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा लेसन दे गए कर्म करो अपना बेस्ट दो लेकिन हर चीज़ के रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो सोचिए कितनी रेलेवेंट है ये बात हम सोचते हैं सब कुछ हमारे हाथ में है हम ही कंट्रोल करते हैं बट सच नहीं है हम कितनी बार फ्यूचर की टेंशन में आज की खुशी खो देते हैं बस फिनिश क्या होगा कैसे होगा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा और कृष्णा शायद मुस्करा देते हैं यार या आप किसी कोई भी पावर को मान रहे हो

आचार्य गौरव गोस्वामी जी की आवाज़ सुन रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल। दोस्तों, क्योंकि कन्हैया कान्हा का बिना माखन कान्हा अधूरे हैं, राधिका के बिना प्रेम अधूरा है, और थोड़ी सी मस्ती के बिना जिंदगी अधूरी है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी जन्माष्टमी। और अब कान्हा के नाम एक खूबसूरत गाना तो है ही, लेकिन आपको बताऊं, कृष्ण की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है, उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस बहुत थे, फिर भी उनकी पहचान बनी उनकी मुस्कान, उनकी बांसुरी और उनका प्रेम। तो इस जन्माष्टमी शायद हम भी कृष्ण से थोड़ा सा ये सीख लें, कर में ईमानदारी रखें, Whatever you do, do it with lot of ईमानदारी, रिश्तों में प्रेम रखे और ज़िंदगी में थोड़ी सी मस्ती ज़रूर रखे। So,

0: वो किसना है. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
7: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
2: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
0: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
3: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights V.
0: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
4: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you, Funasia Radio, for spreading the word.
5: Welcome, welcome. Swagat hai aap sabka 104.9 FM Funasia Radio par. जी जन्माष्टमी की आप सबको फिर से बहुत बहुत मुबारक. अ लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड विशिंग मी ऑल्सो हैप्पी जन्माष्टमी. सो यस, हैप्पी हैप्पी जन्माष्टमी. और अब ये वक्त हो रहा है कान्हे के नाम के बाद स्टार कलाकार को मुबारकबाद देते हैं. यू नो, स्टार कलाकार आप भी हैं मेरे. अगर आप किसी का जन्मदिन हो तो फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा, 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. आज याद करते हैं बॉलीवुड के उस चार्मिंग रोमांटिक हीरो को जिनकी मुस्कान में शरारत थी, ये हमारे कान्हा जैसी स्वेटर्स में स्टाइल था और जिनके गानों ने प्यार को एक अलग ही रंग दिया था. बोल सकते हैं, सोच सकते हैं कौन हो सकते हैं, आप ही बताइए. सो लेट मी मे बी गिव दिस एज अ हिंट.
6: अंकल दादू आगे गिफ्ट रेडी? हाँ रेडी, मैं लेके आता हूँ. गाइस गाइस दादू जी कम. वसीम

Yes, it is none other than our romantic hero, Rishi Kapoor. 4 September 1952 को जन्मे ऋषि कपूर के लिए जैसे सिनेमा उनकी विरासत ही नहीं, उनकी डेस्टिनी भी थी। बॉबी का वो यंग इनोसेंट लवर हो, या कर्ज का स्टाइलिश मोंटी, या चांदनी का रोमांटिक रोहित, या इयर्स लेटर ये जो गाना आप सुन रहे थे कपूर एंड सन से, बिल्कुल डिफरेंट अवतार। ऋषि कपूर ने अपने आप को बार बार री इन्वेंट किया था सालों साल तक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 70s 80s का जब ज़माना था, एब्सोल्युटली बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन का ज़माना, अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना, ऋषि कपूर ने रोमांस और म्यूज़िक को अपनी स्ट्रेंथ बनाई रखी उस ज़माने में भी। दैट चॉकलेट बॉय हीरो, दैट वेरी क्यूट, अमेजिंग, जिनको देखकर ही रोमांटिक ही होने का मन होता था। सो या यू कैन हियर मी लिटिल बिट टाइपिंग, बट दिस इज द सॉन्ग आई वॉन्ट टू रियली शो दैट इनोसेंट क्यूट फेस विद डिम्पल। आपकी आंखों के सामने ही जैसे आ जाए।

और पता है, ऋषि कपूर की खासियत यही थी, वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं थे, वो बॉलीवुड रोमांस का एक पूरा ईरा थे। ऐसे गाने, हम तुम एक कमरे में बंद हो, या एक मैं और एक तू, डफली वाले, कोई भी गाना उठा ले, ओम शांति ओम, या चेहरा है, या चांद खिला है, एक के बाद एक सॉन्ग्स दैट बिकेम मेमोरीज, और टोटली डोमिनेट किया रोमांटिक हीरो के ईरा को। ऋषि कपूर एंड रोमांटिक हीरो जस्ट वेंट हैंड इन हैंड। और उनकी बायोग्राफी का नाम भी उनकी पर्सनालिटी की तरह वंडरफुली अनअपोलोजिटिकल रही, खुल्लम खुल्ला। ऋषि कपूर अनसेंसर्ड, दैट इज वॉट इट इज कॉल्ड, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, एंड दैट वॉज हिज सॉन्ग, राइट? जो दिल में वो जुबान पर, वो थे ऋषि कपूर। उनको हमेशा से सोशल मीडिया का इतना शौक था, और रणबीर कपूर के पापा, बट वॉट एवर ही सेड विथ हिज हार्ट, विच सेज हाउ रोमांटिक ही वॉज विथ हिज हार्ट एज वेल। और नीतू सिंह के साथ उनकी जोड़ी स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी टोटली हिट, एक ब्यूटिफुल बॉलीवुड लव स्टोरी। फिल्में की उन्होंने खेल खेल में, रफू चक्कर, कभी कभी, जब दोनों स्क्रीन पर आते थे, केमिस्ट्री जो है वो एब्सोल्युटली एफर्टलेस हो जाती थी, राइट?

0: बोलो बोलो बोलो बोलो
1: बोलो बोलो बोलो, कितना भी बोल ले ऋषि जी के लिए पूरा दिन ही कम है। वी कैन कीप प्लेइंग हिज सॉन्ग्स। ऋषि जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन पता है सिनेमा की एक खूबसूरत बात है, कलाकार चले जाते हैं, उनकी कला नहीं जाती कहीं भी। एक गाना बजता है ऐसे, एक सीन सामने आता है और सडनली वो कलाकार फिर हमारे सामने जिंदा हो जाते हैं। ऋषि जी का जन्मदिन है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। इतना सारा समंदर जैसा, जैसी फिल्में, अदाकारी, गाने, एहसास, रोमांस को एक डिफरेंट सा रूप देकर ऋषि जी हमारे बीच से चले गए हैं। एंड देन द किड्स हु स्टे ऑन एंड हिज वाइफ नीतू सिंह, ऑल ऑफ दैट एंड द कपूर फैमिली, रिमेम्बरिंग एवरीबॉडी विथ ऋषि जी टुडे, विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और आप किसी का जन्मदिन हो तो ज़रूर फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए, मुझे बताइए इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग।